लोग बुराई की तरफ हमेशा उत्साहित हैं, लेकिन सत्य की तरफ आलस वाले आंख चुराने वाले हैं। निंदा बखीली में चाहे सारा दिन बीत जाए, लेकिन सत्संग की चार घड़ियों के लिए इंसान के पास लाख

मन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ओन सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर, घर घर की आवाज, रेडियो विदस्ता। हम सफर जिंदगी का।

0: बढ़ाएं अपना बिजनेस, एडवर्टाइज करें FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर और पाएं एनिवर्सरी डिस्काउंट। देर ना करें और अभी फोन करें 7056413010 पर।
1: हम हैं अम्बाला कैंट स्थित सामुदायिक रेडियो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर

प्रस्तुत है कार्यक्रम आओ गाँव चले एपिसोड 13। आज का कार्यक्रम आधारित है गाँव अकबरपुर अम्बाला पर। प्रोग्राम प्रस्तुत करेंगे भारत सोपुरी। राज्य सरकार के पीएचई विभाग के अमित खोसला, सुनील कुमार एवं रविंदर कुमार के उपस्थिति में कार्यक्रम रिकॉर्ड किया गया।

0: आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह कार्यक्रम आपके लिए हम लाए हैं आओ गांव चले। आज हम आए हैं अंबाला के एक गांव जिसका नाम है अकबरपुर। आज हम जानेंगे इस गांव के बारे में, इसकी व्यवस्था कैसी है, इसकी उन्नति कैसी है, ये गाँव कितना आगे बढ़ा है। और सबसे अच्छी बात ये होती है कि जब हम गाँव में जाते हैं तो हम सरपंच से बात करते हैं, क्योंकि सरपंच गांव का मुखिया होता है, उसको हर एक चीज के बारे में जानकारी होती है। और एक सबसे अच्छी बात यह है, अब गांव भी शहरों की तर्ज पर आगे बढ़ रहे हैं, और सबसे अच्छी बात यह है कि अब गांव के जो मुखिया है, जो सरपंच है, वो भी युवा है। तो आज हम बात करेंगे गांव अकबरपुर के सरपंच श्री राम निवास जी से, और उनसे जानेंगे गांव के बारे में, गांव की व्यवस्था के बारे में। रामनिवास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कार्यक्रम आओ गांव चले में। तो हम आज पहली बार आपके गांव में आएंगे, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे आपके बारे में, आपका नाम क्या है, आपने शिक्षा कहाँ ग्रहण की और कब से आप सरपंच हैं।
1: नमस्कार सर, सबसे पहले तो मैं सभी सुनने वालों को नमस्कार करता हूँ अपना, और आने वाले नए साल की बधाई भी देता हूँ साथ साथ में।
0: जी, आपको भी बधाई।
1: सर, मेरा नाम है रामनिवास और मैं खंड साहा के अंदर पड़ता है गांव अकबरपुर का सरपंच हूँ मौजूदा
0: जी।
1: और मैं नवंबर 2022 में सरपंच चुना गया, और सरपंच बनने का मेन मकसद कोई ज्यादा वो नहीं था, ये है भी लोगों ने कहा और हम सरपंची में आ गए
0: जी।
1: दो चार दिन में तैयारी करके सरपंची में आए, और लोगों की इतनी सपोर्ट मिली, भी एक तरफा बहुमत से जीते थे
0: जी।
1: और जैसे कि युवा हैं तो सरपंचों के सभी के मकसद रहते हैं भी उनका गांव साफ सुथरा रहे, सभी सुविधाएं मिले गांव वालों को, तो उन्हीं पर हमने काम किया है। और आज अगर आप देखोगे गांव में घूम के, गांव चारों तरफ से बिल्कुल स्वच्छ है, जो शौचालय वगैरह है वो भी परमानेंट बने हुए हैं, सबकी साफ सफाई है, गाँव में एक जोहड़ की व्यवस्था की हुई है, और जो गंदा पानी निकलता है नाले से वो भी नाला अच्छे से सफाई करवा देते हैं, बरसातों से पहले ही सफाई करवा देते हैं। आप देखो कहीं गांव में पानी आता है लेकिन अपने गांव में कभी पानी की मार नहीं हुई, हम टाइम रहते ही सफाई करवा लेते हैं अपने उसकी। सरकार से तो सभी गांव वालों को उम्मीदें होती हैं भी सरकार क्या क्या देगी क्या क्या देगी।
0: तो ये जानना चाहूंगा कि आपके गांव की जो व्यवस्था है उसमें जब आप सरपंच बने तो आपके क्या लक्ष्य थे जिससे आप अपने गाँव को, अपने गाँव वासियों को एक अच्छी जिंदगी, एक स्वच्छ जिंदगी दे सके।
1: सर, लक्ष्य तो पहले यही था भाई मेरा गांव बिल्कुल स्वच्छ हो, गंदगी कहीं पर भी ना हो, गलियां नालियां सब स्वच्छ रहें, और मेन पानी का जो पीने का पानी है वो स्वच्छ आए हमेशा, कहीं भी कहीं पर भी कोई दिक्कत ना रहे, किसी के घर गंदा पानी ना जाए, और स्कूल की सुविधा, धर्मशालाओं की सुविधा, ये सारे अच्छे से साफ सुथरी रहें, लोगों के ठहरने की बैठने की व्यवस्था रहे।
0: आपके गांव में कितनी आबादी होगी और कितने अंदाजा वोटर्स होंगे?
1: वोटर 540 है और आबादी 735 के लगभग है।
0: मतलब 735 परिवार रहते हैं?
1: नहीं, 735 कुल अच्छा। आबादी है गांव की, छोटा सा गांव है
0: जी,
1: और मेरे ख्याल से 140 के लगभग परिवार हैं
0: जी। हम आज आपके गांव में आए हैं और जल शक्ति जो मिनिस्ट्री है केंद्र सरकार की
1: जी,
0: उनकी ओर से हम एक कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका कार्यक्रम रेडियो पर चलता है, उस कार्यक्रम का नाम है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी
1: जी सर।
0: तो आज हम आपके गांव के बारे में जब जानेंगे और जब यह कार्यक्रम प्रसारित होगा तो जो हमारे अंबाला के आसपास गांव है उन तक भी ये बात पहुंचेगी। हमारा मकसद भारत सरकार की ओर से ये जानना है कि आपके गाँव में क्या हर घर में नल से जल आता है?
1: बिल्कुल आता है सर, हर घर में नल लगे हुए हैं सर, और प्रॉपर तरीके से मेंटेन है सब, अच्छे से पानी आता है, किसी को भी पानी की कोई दिक्कत नहीं है सर। और सबसे बढ़िया तो जो अपना ये ऑपरेटर साहब लगे हैं, ये टाइम टाइम पर उसमें दवाई भी डालते हैं ताकि लोगों को पानी से संबंधित कोई समस्या ना आए
0: जी।
1: मैं कहता हूँ जी, ऐसी सुविधा पूरे अंबाले में कहीं नहीं होगी पानी की जैसी हमारे गांव में है, बिल्कुल साफ सुथरी व्यवस्था है।
0: तो पानी की जो सप्लाई है वो पूरे दिन रहती है या किसी खास समय पे, सुबह शाम रहती है?
1: टाइम से रहती है, सुबह जैसे 6 बजे से चलाते हैं 9 बजे तक रहती है
0: जी,
1: और शाम को लगभग 5 बजे से लेके 7:30 बजे तक रहती है।
0: आपसे ये जानना चाहूंगा कि एक समय हमारे देश में ये था कि जो हमारी महिलाएं हैं वो अपना बाल्टी या घड़ा या कोई भी बर्तन लेके कहीं दूर दूर से पानी लेके आती थी। एक पुराना जो गांव होता था उसका एक दृश्य ऐसा होता था। तो क्या आपके गांव में आपने कभी ऐसा दृश्य देखा है?
1: बिल्कुल देखा सर, हमारा बचपन इसी चीज में गुजरा है
0: जी।
1: गांव में चारों तरफ कुएं होते थे
0: जी।
1: और अभी तो एक कुआ हमने उसके क्या कहते हैं निशानी के तौर पे रखा हुआ है, जिसके ऊपर जाल डाला हुआ है
0: जी।
1: और कुआ ये भी नहीं है अभी उसमें पानी सूख गया, उसमें पानी भी है सर, पर ये अभी अब कोई पीता नहीं पानी कुएं के, जितने सब नल से पानी पीते हैं।
0: हम इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने अंबाला वासियों को ये कहना चाहते हैं कि जो वो प्रथा थी वो अगर खत्म हो गई है तो इसका मतलब पानी का जो प्रवाह है, जो पानी का जो इंतजाम गांव वालों के लिए है, अब वो पूरा है।
1: देखो सर, पानी का इंतजाम तो मैं कहता हूँ मेरे गांव में तो एक्स्ट्रा है
0: जी,
1: पूरा ही नहीं एक्स्ट्रा है, बहुत ज्यादा, इतना गांव का और पूरा पट जाता है पानी, इतना है मेरे पास, हर घर में पानी पहुंच रहा है।
0: ये अच्छी बात है कि
1: बहुत बढ़िया है पानी की,
0: ये अच्छी बात है कि आपका गांव आत्मनिर्भर है। आपके कहने से मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर और किसी गांव को पानी की जरूरत है हम तो उनको हाँ, भी दे
1: हम देते हैं सर, फ्लेल माजरा और मिठापर तक पानी चला जाता है
0: हमारा। इसके साथ जुड़ता हुआ मैं आपसे एक और प्रश्न करना चाहूंगा, वो ये है कि स्वच्छता जो आपके गांव की है उसको आप किस तरीके से मेंटेन करते हैं, चाहे वो गांव की गलियों की स्वच्छता हो या घरों की स्वच्छता हो, जो प्रबंधन है उसका वो आप कैसे करते हैं?
1: देखो सर, एक तो हमने स्वीपर रखा हुआ है, सरकार की तरफ से उपलब्ध है स्वीपर, वो स्वीपर कचरा तो सुबह इकट्ठा कर लेता है वो, उसको गाड़ी दी हुई है और साफ सफाई भी करता है। जब मान लो कचरा ज्यादा हो जाता है, जैसे आंधी तूफान आते हैं उस समय व्यवस्था कर देते हैं, दो चार लेबर लगा के साथ में उसके सफाई करवा देते हैं। मैं नहीं मानता भी कहीं गंद पड़ा होगा हमारे गाँव में,
0: उसके लिए मैं आपको साधुवाद देना चाहता हूँ। जब हम आपके गाँव में आए और गाँव में जब हम गलियों से चल के यहाँ आपके घर तक आए और बाकी गांव वालों से भी जब हमने बात की, हम स्कूल में भी गए
1: जी,
0: और बहुत अच्छा लगा, खुली डुली जगह है और साफ सुथरी जगह है
1: जी सर।
0: आप मुझे ये बताएं कि हमारा पर्सनल हाइजीन, चाहे हम पुरुष है चाहे महिलाएं हैं, तो आपके गांव में जो पर्सनल हाइजीन है उसके बारे में क्या आप लोगों को जागरूक करते हैं? जैसे हमें खाना खाने से पहले हाथ धोने चाहिए, या जब हम खाना खाने बैठें तो उसके पहले हम अपने हाथों को साफ करें ताकि हमारी सेहत अच्छी रहे, तो उसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे?
1: देखिए सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आज हर परिवार में पढ़े लिखे लोग हैं, सब अपने से साफ सफाई रखने का इंतजाम पहले से ही रखते हैं, लेकिन फिर भी हमने कई बार छोटे छोटे प्रोग्राम किए हैं गांव में और पर्सनल हाइजीन के ऊपर भी कई बार, लेडीज के ऊपर भी बहुत बातें की हैं, प्रॉपर है, कोई दिक्कत नहीं है सर। और मेरे ख्याल से पूरे गाँव में आपको एक भी आदमी नहीं मिलेगा सर गंदा कोई हो।
0: चलिए, आप मुझे ये बताइए कि आप एक युवा सरपंच है
1: जी सर,
0: हमारा देश हमारे गांव से बनता है
1: जी,
0: अगर गांव उन्नत है, अगर गांव की तरक्की है तो ये मान के चल सकते हैं हमारे देश की तरक्की
1: है। बिल्कुल है सर,
0: देश आप युवा होने के नाते आपके आने वाले दिनों में क्या लक्ष्य है, किस तरीके से आप पानी का प्रबंधन करना चाहेंगे, क्योंकि जो ग्राउंड लेवल है पानी की वो आने वाले दिनों में आहिस्ता आहिस्ता कम होती जा रही है, मीन्स पानी का जो प्रवाह है जमीन के नीचे वो कम होता जा रहा है, उसके लिए क्या कुछ ऐसे आप प्रबंधन कर रहे हैं?
1: सर, मैंने सरकार को दो बारी रेजुलेशन डाल के दिया है
0: जी,
1: भी जब बरसात का पानी आता है वो बहुत ज्यादा ओवरफ्लो होता है
0: जी,
1: उसको जमीन में उतारने के लिए छोटे छोटे बोर किए जाएं ताकि वो जमीन में अच्छे से रह जाए, छोटे छोटे कुएं बनाए जाएं, और मैं कहता हूँ बरसात का जब पानी इकट्ठा होता है ना वो स्वच्छ होता है
0: जी,
1: वो इतना गंदा नहीं होता,
0: नहीं होता।
1: जब शुरू में पहला पानी निकल जाता है उसके बाद आप जमीन में स्टोर कर सकते हैं सर
0: जी।
1: और मेरे गांव में ऐसा मतलब कोई तालाब भी नहीं है जो बड़ा तालाब हो जिसमें हम स्टोर कर सके, तालाब है एक छोटा है लेकिन उस वो
0: इतना बड़ा इतना ज्यादा नहीं है,
1: हाँ वो एक बारी भर जाता है और पूरे साल तो सूखता नहीं है सर।
0: आपसे जानना चाहूंगा कि आप सरकार को इस विषय के एक्स्ट्रा अपने गांव में क्या किसी चीज की कमी है जो आप चाहते हैं सरकार को कहें, और हम कोशिश करेंगे कि आपकी आवाज राज्य सरकार और केंद्र सरकार तक जाए, अगर आपकी कोई ऐसी बात है तो आप कह सकते हैं, क्योंकि हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत आए हैं, स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी इस कार्यक्रम के माध्यम से आए हैं, तो हम चाहेंगे कि आपके गांव में अगर किसी चीज की कमी है तो आप सरकार से क्या मांगना चाहेंगे?
1: सर, कमी तो मैं ये कहूंगा, एक तो हमारी जो मेन सड़क है ये ना तो मंडी बोर्ड के अंदर है और ना ही उसके पीडब्ल्यूडी के अंडर आती है, इन्होंने ये 7-8 किले की सड़क है वहां से अड्डे से लेके गांव के तक, जबकि ये सड़क 44 फुट चौड़ी है, दोनों महकमों ने अपने अंडर नहीं ले रखी।
0: अच्छा,
1: मैं पिछले 3 साल से लगातार कई बार जा चुका हूँ, दोनों जेआई एसडीओ से बात भी कर चुका हूँ, इसको एक तरफ तो लगाओ, लेकिन किसी ने नहीं लगाई। और आपने देखो वो छोटा सा टुकड़ा टूटा हुआ है, ना ही हमें पंचायत को दिया जाता है भी आप पंचायत खुद बना दे इसको
0: जी।
1: हम तो पंचायत की तरफ से भी इसको बनाने के लिए तैयार हैं अगर बन जाता है तो मैं तो यही चाहूंगा कि एक तो ये टुकड़ा उसमें या तो पीडब्ल्यूडी को दिया जाए या फिर मार्केट बोर्ड को दिया जाए। और दूसरा जैसे पंचायती भूमि है अपनी यहाँ पे पड़ी है, एक उसमें शमशान घाट भी है उसी में पंचायत भूमि के साथ, सरकार से अपील करेंगे भी उसको जल्दी से निपटारा कराए और पंचायत के हक में लेके आए उसको, ताकि उसका जल्दी से साफ सफाई करा के बच्चों के लिए वहाँ ग्राउंड वगैरह की व्यवस्था की जाए। और भी बहुत स्कीमें हैं
0: मैं
1: सरकार की, वो सभी लागू की।
0: मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि आपके गांव में खेल कूद का कोई काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है?
1: बस वही खेल कूद का ही काम नहीं है सर, अच्छा, अभी ग्राउंड की कमी है। अब ये छोटा सा स्कूल है, आपने देखो स्कूल में गया, उसमें इतना बड़ा ग्राउंड नहीं है। बच्चे छोटे बच्चे ही खेल पाते हैं उसमें, बड़े बच्चों के लिए मतलब व्यवस्था नहीं है। बड़े बच्चे दूसरे गाँव में जाते हैं, जैसे संभालखा हो गया, साहा हो गया, ऐसे
0: वहाँ जाते हैं।
1: हाँ जी,
0: आखिर मैं आपसे जानना चाहूंगा, आपसे इस सामुदायिक रेडियो एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार के माध्यम से आप अपने गांव वासियों और आसपास के जो लोग रहते हैं इस रेडियो के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहते हैं?
1: सर मैं तो स्वच्छता के ऊपर ही संदेश देना चाहूंगा, भी सभी को अपने पर्सनल स्वास्थ्य के बारे में और गाँव के स्वास्थ्य के बारे में ध्यान रखना चाहिए। कहीं पर भी कोई गंदगी या कबाड़ वगैरह नहीं फैलाना चाहिए, जिससे बदबू वगैरह फैले, लोगों को दिक्कत हो। और स्वच्छ रहेंगे, गांव स्वच्छ रहेगा, देश भी स्वच्छ रहेगा सर।
0: तो एक जमाना था कि जब हम जो वॉशरूम घर में नहीं होता था तो हमारे पुरुष और महिलाएं बाहर जाते थे
1: जी, जाते।
0: वो चीज अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी है?
1: बिल्कुल सर, अब पूरे मैं तो कहता हूँ मेरे गांव में क्या सर, आसपास के गांव सभी में बंद है अब तो।
0: चलिए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: तपन जी से हमने बात अभी की, राम निवास जी से। हमारे साथ है पीएचई डिपार्टमेंट अम्बाला छावनी से सुनील कुमार जी। सुनील जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगा, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इस कार्यक्रम आऊं गाऊं चले में। आज हमने यहाँ बात की है स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी। आप इस गांव में आते हैं तो आप इस गांव के बारे में और आपको कितना सहयोग इस गांव से मिलता है और आपका जो मेन उद्देश्य होता है वो क्या होता है?
1: सर, मैं देखो 2012 से इस गांव में आ रहा हूँ। मैंने बहुत से लोगों से, तकरीबन सभी गाँव वालों से बातचीत भी की है। हम यहाँ BWSC कमेटी की मीटिंग भी लेते हैं, स्कूल अवेयरनेस प्रोग्राम भी करते हैं। तो शुरू से आ रहा हूँ, मतलब जैसे अम्बाला के गांव हैं तो सारे ही अच्छे गांव हैं। तो जैसे अम्बाला के मेरा ब्लॉक साहा है, तो ब्लॉक साहा में अकबरपुर गांव ये पड़ता है। एक तो सर ये छोटा सा गांव है, ठीक है, इसकी गांव की गलियां साफ सुथरी हैं। और शुरू में जब हम ने डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया था तो कुछ लोग थे कि हाँ, उनकी ओपन टैप चलती रहती थी, तो हमने मीटिंग्स करके डोर टू डोर सर्वे करके उनको समझाया। और आज आउटपुट निकल के आई है कि कोई भी जो व्यक्ति है पानी को वेस्ट नहीं करता जी। और गांव का हमारा आने का मुख्य लक्ष्य यही होता है कि जल संरक्षण करना जी। क्योंकि हमारे पास 1% से भी कम पानी हमारी धरती में रह गया है जीवन व्यापन करने के लिए। क्योंकि अगर हम 1% से भी कम पानी को नहीं संभाल सके तो हमारी स्थिति ऐसी आ जाएगी, हवा के बाद पानी ही ऐसा तत्व है कि जो जीवन के लिए जरूरी तत्व है। अगर हम पानी को ही ऐसे वेस्ट करते रहे तो हमारा जीवन संभव इस धरती पे नहीं।
0: और आगे की जो हमारी पीढ़ी आएगी उनको देने के लिए भी हमारे पास कुछ हाँ, नहीं होगा,
1: कुछ नहीं होगा सर। क्योंकि हमने खुद भी अदर स्टेट में विजिट किया, हमने छोटी छोटी थैलियों में पानी को बिकते देखा है सर जी। तो हम नहीं चाहते कि हाँ, हमारे यहाँ अम्बाला में भी ऐसी स्थिति आए। हम लोगों को यही संदेश देते हैं, इसीलिए ही मोटिवेट करते हैं कि जितना जरूरत हो पानी को उतना लें, बाकी अपनी टैप को बंद कर दें। यहाँ तक कि सर जिनकी टैप टपकती भी है, हम उन लोगों को भी कहते हैं कि टपकता पानी एक तो ठीक नहीं रहता, और दूसरे तरीके से हम लोग जैसे सुपरस्टिशियस हो गए आजकल, तो हम कहते हैं कि अपने बाथरूम का पानी बंद कर लो, इससे आपके घर में बरकत नहीं रहेगी जी, तो लोगों को उस तरह भी समझाते हैं।
0: मकसद यही है कि पानी को बचाना है और पानी का प्रॉपर इस्तेमाल
1: करना है।
0: आप राज्य सरकार के इस समय प्रतिनिधि हैं, राज्य सरकार आपको कितनी मदद करती है, कितना सपोर्ट करता है, कितना प्रोत्साहन देता है कि आप गाँव में, अलग अलग गाँव में जाएं और फिर उस गाँव के बारे में आप बात करें, लोगों को प्रेरित करें, तो उसके बारे में आप क्या कह सकते हैं?
1: सर देखो, हम गाँव में जाते हैं, जो गाँव में हमें प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम अपने अधिकारियों को बताते हैं और अधिकारी उस पर हेड ऑफिस मीटिंग में बताते हैं जी। तो सरकार का पूरा साथ रहता है इसमें, जो भी मतलब प्रॉब्लम्स गांव में होती हैं तो सरकार उसको हमें ग्रीवेंस में डालते हैं उनकी, और पूरा साथ देती है गांव में, कोई दिक्कत ना हो। यहां तक कि जैसे लास्ट गांव मोड़ा में प्रॉब्लम आ गई थी सर, ठीक है, मोड़ा में चीफ इंजीनियर श्री राजीव बाती सी आए, तो उन्होंने अपना पूरा ऐसी साफ, संडे को भी सारा स्टाफ हमारा गांव में ही रहा जब तक समस्या ठीक नहीं हुई, तो वहां के इनसैनिटरी कनेक्शन वगैरह सब हमने सही तरीके से करवा के तब वहां पे स्वच्छ पानी पूरा पीने लगे लोग, और लोगों को समझाया जिनके इनसैनिटरी कनेक्शन थे कि भाई इनको आप ठीक कराओ, और डिपार्टमेंट ने और लोगों ने मिलकर आपस में दोनों ने एक दूसरे का सहयोग किया, और तभी ये संभव हो सकता है, क्योंकि अकेला विभाग भी कुछ नहीं कर सकता। अब सर हम गांव में जाते हैं, अगर हमें लोग नहीं जानते, लोगों को हम नहीं जानते, तो काम करना संभव नहीं होता।
0: यानी कि गांव के साथ आपका संपर्क बना है, बिल्कुल, चाहे वो स्कूल हो चाहे सरपंच जी हो।
1: बिल्कुल सर, बिल्कुल।
0: आप अम्बाला के उन श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं जो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो की तस्ता सुन रहे हैं, वो अपने गाँव को स्वच्छ करें, अपने पानी का प्रॉपर यूज करें, पर्सनल हाइजीन के बारे में क्या संदेश आप देना चाहेंगे?
1: सर मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि वैसे तो हर व्यक्ति अवेयर है, हर व्यक्ति जागरूक है। आजकल ट्रेंड चला हुआ है आरओ का जी, ठीक है, अम्बाला में आरओ की जरूरत नहीं है सर। अम्बाला का जो TDS है वो 200 से 250 के बीच है,
0: यानी कि वो हमारे सेहत के लिए अच्छा है,
1: बिल्कुल अच्छा पानी है। मैं तो ये कहना चाहूंगा कि जो अम्बाला का पानी है ना, नेचुरली पानी धरती से निकल रहा है, वो आरओ से भी बहुत बढ़िया पानी है। आरओ तो सभी मिनरल्स को खत्म कर देता है, और गांव के जो हमारे अम्बाला के निवासी हैं, मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि भी जहां भी आप जाओ लोगों को यही संदेश दो कि भी पानी वेस्ट ना करें
0: जी,
1: क्योंकि अगर हम उनको छोटे बच्चे को यही संदेश देंगे कि पानी वेस्ट ना करें तो वो 10 लोगों को कहेगा तो छोटे बच्चे की बात को वो गौर से सुनेंगे कि इतने छोटे बच्चे ने इतनी बड़ी बात कैसे बोल कैसे किया।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से बात करने के लिए।
2: वितस्ता रेडियो आपकी जिंदगी की रवानी।
0: हमारे साथ पीएचई डिपार्टमेंट से रविंदर सर भी हैं। रविंदर जी से ये जानना चाहेंगे कि किस तरीके से आप समन्वय करते हैं गांव के लोगों के साथ, और साथ में आपका स्वागत भी करता हूं कार्यक्रम आओ गांव चले में, जो हम आज गांव अकबरपुर में आए हुए हैं।
3: नमस्कार सर, आपके सभी श्रोताओं को नमस्कार मेरा। और सर मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे हम गाँव में जाते हैं लोगों को समझाते हैं कि जो हमारा पानी है वो 1.6% से भी कम रह गया, 1.6% से
0: जी।
3: तो गांव वालों को ये बताते हैं कि जो लोग ये कहते हैं कि हम पानी पी रहे हैं, हमने कोई अपना समरसीबल लगवाया हो, नलका लगवाया है, वो पोर्टेबल वाटर नहीं है। जो हम पीएचईडी से पानी दे रहे हैं वो पोर्टेबल वाटर है, पोर्टेबल मतलब पीने का पानी
0: जी।
3: तो लोगों से ज्यादा हम आग्रह करेंगे कि वो पानी ना पिए। हमारा जो ट्यूबवेल है उसकी हम जो भी चेकिंग करते हैं, उसकी क्वालिटी चेक करते हैं आफ्टर मानसून, प्री मानसून उसके सैंपल होते हैं, और इसके जो हमारा बैक्टेरियोलॉजिकल टेस्ट होता है महीने में एक बार होता है सर
0: जी। यानी कि लोगों के लिए जो पानी है वो स्वच्छ मिले, साफ सुथरा मिले
3: जी, जी सर,
0: ताकि उसमें कोई दिक्कत ना आए
3: जी सर।
0: तो क्या संदेश देना चाहेंगे सभी अंबाला वासियों को इस कार्यक्रम के माध्यम से?
3: सर यही बात कहेंगे कि आज अगर हम ये बात कहें कि दूध महंगा है या पानी महंगा है, तो हम यही कहेंगे कि पानी ज्यादा महंगा है
0: जी।
3: आज आप अगर मान के चलो कि जो एक बोतल है 20 रुपए की आ रही है सर, अगर 1000 लीटर की टंकी है हमें 20 रुपए के हिसाब से भरनी पड़ जाए सर,
0: और उसकी कीमत हाँ। हम आंक सकते हैं कितनी
3: जी
0: कीमत
3: सर
0: है उसकी?
3: 20,000 रुपए का लीटर पानी हम हर रोज पी रहे हैं सर
0: जी।
3: तो यही आग्रह करूंगा मैं अपने अंबाला वासियों को कि पानी को जितना उपयोग हो सके उतना ही इस्तेमाल करें, और अपनी आने वाली भावी पीढ़ी को पानी दें और पानी को सुरक्षित रखें सर।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमारे से बात की और आपने हरियाणा राज्य सरकार की ओर से अपनी बात रखी, और इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू।

0: गांव अकबरपुर से ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में है ट्यूबवेल के ऑपरेटर रमेश चंद जी। रमेश चंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। आपसे हम जानना चाहेंगे, आप ट्यूबवेल चलाते हैं, किस तरीके से आप उसको मेंटेन करते हैं, क्या ख्याल रखते हैं आप उसका, और क्या टाइमिंग होती है जब आप अपने गांव वालों के लिए पानी का प्रवाह देते हैं।
1: सर जी, देखो सवेरे में 6 बजे से 9 बजे तक चलाता हूँ
0: जी।
1: बीच में भी कोई भी कोई फंक्शन हो, किसी का प्रोग्राम हो, वो बोल देते हैं अभी हमें 1 घंटा पानी दे दे, हम उनको वो भी दे देते हैं
0: जी।
1: फिर भी हम उनको ये बोलते हैं अभी ये पानी पीने के लिए है, वेस्टिंग करने के लिए
0: जी। जी,
1: तो शाम को 4 बजे से 7 बजे तक चलाते हैं जी। 7 बजे तक चला के फिर भी कई लोग ऐसे हैं ऊंचे नीचे लाता, उसमें कहीं ऊपर नीचे पे, तो फिर भी किसी का फोन भी आ जाता है, फिर भी हम उसको 1 घंटा फिर भी फालतू दे देते।
0: आपसे मैं एक व्यक्तिगत प्रश्न करना चाहूंगा, वो ये है कि आप लोगों के लिए जब पानी वहां से छोड़ देते हैं तो क्या कभी ऐसा दिन रहा कि जब आप वहां ना जा पाए और लोगों को पानी ना मिला हो?
1: नहीं, ऐसा तो कोई दिन ही नहीं है। जब कोई भी वैसे जी देखो आंधी तूफान आ गया,
0: वो ठीक है
1: हाँ जी, तो लाइट नहीं आई, वो तो देखो मजबूरी है जी,
0: जी।
1: उसमें तो कोई पानी नहीं पहुंचेगा, फिर भी हम मान लो बिजली वाले से रिक्वेस्ट करते हैं भी थोड़ी देर के लिए बिजली का इंतजाम कर दो, हमारे गांव में जो पानी है उसके लिए गांव प्यासा मर रहा, उस वास्ते पानी दे।
0: ये माना जाता है कि पानी पिलाना धर्म का कार्य है। जो आप ये कार्य आप कर रहे हैं तो आपको दिल की जो संतुष्टि है वो कितनी है?
1: उसको तो मेरी तो पूरी की पूरी 100%
0: संतुष्टि है।
1: हाँ जी, मैं तो अपने गांव वालों को ये बोलता हूँ भी देखो किसी गांव में कोई कैसी बंदा
0: जी,
1: मैं तो आपको जिस टाइम भी आप आधी रात बोलेंगे, आधी रात, दोपहर को, शाम को, जिस टाइम भी आप ये कहेंगे भी हमने पानी पीना है, हम पानी के लिए कैसे मर रहे हैं, हम उसी टाइम आपके वास्ते पानी
0: छोड़ देंगे। ठीक है,
1: और गांव वालों को भी ये कहता हूँ देखो जी, मैं मौले घर घर भी जाता हूँ भी कोई पानी वेस्ट ना करे
0: जी,
1: उनको ये बोलता हूँ भी जैसे आप कपड़े धोते हैं, ये कपड़े धो के पानी ना मंदाओ, इसको जैसे आप घर में पोछा लगाते हैं
0: उसमें काम लगा, आपके कुछ गमले हैं
1: उनमें पानी डाल दो, पर जिस जैसे मान लो आप पानी की वेस्टिंग करेंगे तो आपनो एक दिन भी मान लो जैसे ट्यूबवेल ना चले तो आपनो उस चीज की कितनी दिक्कत आएगी
0: जी।
1: जब आप, मैं ये बोलता हूँ भी मान लो आप, मैं 1 घंटा चलाऊ तो 1 घंटे में सारे गाँव में पानी फिर, जब आप सही तरीके से यूज करेंगे
0: जी।
1: जब आप सही तरीके से यूज नहीं करेंगे तो आपको पानी 4 घंटे चला लो जी, तो भी
0: नहीं, नहीं पूरा होना
1: हाँ जी। तो लोग फिर भी वाले बहुत में भी जो समझ रहे हैं इस चीज को, बहुत ही कम पानी।
0: आप जहाँ पंप चलाते हैं वहाँ पे आपकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम है?
1: इंतजाम तो बतेरे हैं जी, जैसे मान लो साफ सफाई भी है वहाँ पे, मान लो कोई जैसे जोड़ा कोई नंगा नहीं है, जैसे कोई गरीब है वो भी अच्छी तरह से बढ़िया तरीके से लगा रखे हैं, सारी सुविधा जी वहाँ पे।
0: अंबाला वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे इस कार्यक्रम के माध्यम से, जो ये कार्यक्रम रेडियो पे जब चलेगा तो पूरे अंबाला वासी कार्यक्रम को सुनेंगे, उनको क्या कहना चाहेंगे?
1: उनको भी यही कहना चाहूंगा भी एक तो माले अपने गांव-गांव में सब में जैसे मैं बोले अभी माले पानी भर लिया, कपड़े धो लिए, उसको घर में यूज करो, पोछा लगाने में, गमले में डाल लो, पानी की वेस्टिंग ना करो, पानी बहुत ही कीमती है। आज अपने गांव में माले वाटर लेवल 350 पर मोटर पहुंच रही है
0: जी,
1: जब आप इसको वेस्ट करेंगे तो आने वाले समय में ये तो थोड़ा बरसात होगी जी, तो इस करके इतना वाटर
0: पानी का लेवल थोड़ा बढ़ गया,
1: ये बरसात ना पड़ती तो वाटर लेवल बना सकते।
0: आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी श्रोताओं को मैं ये कहना चाहूंगा कि हम इस समय बात कर रहे हैं गांव अकबरपुर अंबाला से, और हम बात कर रहे हैं कार्यक्रम स्वच्छ सुजल गांव की कहानी रेडियो की जुबानी के अंतर्गत, और मेरे साथ इस समय राज्य सरकार के PHE डिपार्टमेंट के पदाधिकारी भी साथ हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से आपको हम ये संदेश देना चाहेंगे कि जल ही जीवन है, अगर हमारे पास जल रहेगा तो ही हमारी जिंदगी सफल रहेगी और हम जिंदगी को अच्छे से आगे बढ़ा पाएंगे। और सरपंच जी, आपका और सभी का यहाँ पर गांव अकबरपुर में आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने हमसे बात की, और लेता हूँ आप सभी से इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे थे कार्यक्रम आओ गाँव चले एपिसोड 13, जो आधारित था गाँव अकबरपुर अंबाला पर। पीएचई विभाग टीम के अमित खोसला, सुनील कुमार एवं रविंदर कुमार के उपस्थिति में रिकॉर्ड किया गया। कार्यक्रम एडिट, निर्देशित एवं प्रस्तुत किया भारत सोपोरी ने। ये थी FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता की प्रस्तुति।
3: हम सुन रहे हैं 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता। अंबाले का अपना रेडियो, सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ग्वालियर में जन्मी है उषा खन्ना 7 अक्टूबर 1941 को। उनके पिता मनोहर खन्ना एक गीतकार और गायक थे। 1946 में जब वे किसी काम के सिलसिले में बॉम्बे आज का मुंबई आए तो इत्तेफाक से उनकी मुलाकात जदन बाई यानी नरगिस दत्त की माँ से हुई। इसी दौरान संगीतकार ओपी नैयर ने

0: शैखन्ना का परिचय उस वक्त भारतीय फिल्म उद्योग के एक ताकतवर शख्स शशिधर मुखर्जी से कराया। उषा खन्ना को शशिधर मुखर्जी ने अपनी फिल्म दिल देके देखो, जो सन 1959 में रिलीज हुई, संगीत निर्देशिका के तौर पे साइन किया।
1: यार चुलबुला है, हसीन दिलरुबा है, झूठ बोलता है मगर जरा जरा।

ये फिल्म जिसमें आशा पारेख भी शामिल थी सुपरहिट साबित हुई। उसके बाद सन 1961 में एक और फिल्म आई, हम हिंदुस्तानी। शशिधर मुखर्जी ने इस फिल्म के लिए भी संगीत निर्देशिका के तौर पे उषा खन्ना को साइन किया। संगीत निर्देशिका उषा खन्ना ने अपने फिल्मी करियर के दौरान कई हिट फिल्मी गाने दिए, पर संगीत निर्देशिका के तौर पे उन्हें काफी मेहनत करनी पड़ी।

कामयाब संगीतकार के तौर पे उषा खन्ना सन 1950 से सन 1980 लगभग 3 दशकों तक फिल्मी दुनिया में राज करती रही। फिल्म फेयर पुरस्कार के लिए सन 1983 में सौतन, उन्हें लता मंगेशकर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया।

उषा खन्ना सभी तरह के गीतों की धुनें तैयार करने में माहिर थी, जिनमें रोमांटिक, दुख भरे और चुलबुले लोकगीत भी शामिल थे। मोहम्मद रफी की आवाज में गाए गए कई गाने सुपरहिट साबित हुए। फिल्म दिल देके देखो, हवस, साजन की सहेली, आप तो ऐसे न थे, इन फिल्मों के गाने और खूबसूरत संगीत शायद आपको याद होगा।

और काफी मकबूल फिल्मों में उषा खन्ना ने संगीत दिया, जिनमें फिल्म आओ प्यार करें, शबनम, निशा, मैं हूं अल्लादीन, फैसला, एक सपीरा एक लुटेरा, मैं वही हूं, लाल बंगला, अली बाबा 40 चोर, बादल, इंसाफ, दादा, और भी बेशुमार फिल्में जिनके लिए उषा खन्ना ने संगीत तैयार किया। संगीत निर्देश का उषा खन्ना ने लगभग हर गुलकार गुलकारा के साथ काम किया है। मोहम्मद रफी, आशा भोसले, लता मंगेशकर, महेंद्र कपूर, मन्ना डे, मुकेश और यशोदास।

0: रूट के जाने वाली सुन अफसाना प्यार का है।
1: सुनन खातर हरियाणवी सोंग करो रेडियो वितस्ता नू फोन और अपना मूड कर लियो ऑन, सेट कर दियो 90.0 ऑन योर फोन और मलै दियो 7056413010 पा फोन।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी और लेके आए हम आपके लिए आज के कृषि समाचार। इस कार्यक्रम में मेरा साथ देंगे,
1: नमस्कार, मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना।
0: मक्का की 15 जुलाई तक बिजाई करें, संकर व बायो फोर्टिफाइड किस्में अपनाएं, 4 से 5 बार करें मिट्टी की जुताई, 1 एकड़ में 8 किलोग्राम बीज डालें। मक्का की खेती के लिए रेतीली दोमट व दोमट मिट्टी और अच्छे जल निकासी वाले खेतों का चयन करें। 4 से 5 जुताई कर 2 बार सुहागा लगाएं ताकि मिट्टी भुरभुरी हो जाए और खेत में ढेले ना रहे। मक्का की बिजाई केवल ऊंचे इलाकों में ही करें जहां पानी की निकासी हो सके। मक्का फसल की बिजाई मध्य जुलाई तक पूरी कर लें। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि सामान्य मक्का की लंबी व मध्यम अवधि के सिफारिश शुदा एकल संकर किस्में और बायो फोर्टिफाइड मक्का की पूसा MH4, पूसा HQPS1 इम्प्रूव्ड, पूसा HQPS5 इम्प्रूव्ड, HQPS1, HQPS4 और HQPS5 संकर किस्मों का ही प्रयोग करना चाहिए। टेम्पोट्रियम लेडियम 42 SC 115 मिलीलीटर प्रति एकड़ की दर से बिजाई के 20 से 25 दिन बाद 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करें। बिजाई से पहले कर ले बीज उपचार। 1 एकड़ खेत के लिए 8 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। मक्का में फॉल आर्मीवर्म फ्रा सर्वाधिक हानिकारक कीट है। फ्रा की रोकथाम के लिए क्लोरोट्रोनरी पोल 19.8, थाइमेथो किस्म 19.8 अनुपात कीटनाशी द्वारा 6 मिलीमीटर प्रति किलोग्राम बीज के दर से शाम को बीज उपचार करें व सुबह बिजाई करें। इससे दीमक व तना छेदक की रोकथाम भी हो जाएगी। फसल की बीमारियों से बचाने के लिए थेरम 4 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज की दर से उपचारित करें। बीज को बिजाई से 4 से 5 घंटे पहले उपचारित करें। बिजाई का तरीका, पूर्व पश्चिम दिशा में मेड बनाकर मेड के दक्षिण दिशा में उपचारित बीज से 4 से 6 सेंटीमीटर गहरी बिजाई करें। बाद में आधा खुड की ऊंचाई तक पानी लगाने से जमाव ज्यादा व जल्दी होता है। बिजाई यदि न्यूमेटिक प्लांटर द्वारा चौड़ा खुड विधि का उपयोग करके की जाए तो जमाव अधिक होता है व पानी को भी 30 से 35 अनुपात की बचत रहती है। खाद व उर्वरक। ज्यादा पैदावार लेने के लिए गोबर की खाद 60 क्विंटल प्रति एकड़ खेत की तैयारी से पहले डालें। सामान्य दिशाओं में 50 किलोग्राम GAP, 40 किलोग्राम MOP व 37 किलोग्राम यूरिया का प्रयोग बिजाई के समय करें। खरपतवार नियंत्रण। खरपतवार नियंत्रण के लिए 600 ग्राम एस्ट्रोजन 50 WP के 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ के हिसाब से बिजाई के 1-2 दिन बाद या खरपतवार अंकुरण से पहले छिड़काव करें। कीट नियंत्रण। फसल में फॉल आर्मी वर्म सबसे खतरनाक कीट होता है। इसका पता लगाने के लिए खेत में 5 फेरोमोन पिंजरा प्रति एकड़ के दर से बिजाई के बाद लगाएं। क्लोरोनेट्री प्रोनोल 18.5 SC 80 मिलीलीटर प्रति एकड़ या सैन्योटोराम SC 100 मिलीलीटर का 200 लीटर पानी में गोल बनाकर छिड़काव करें।
1: घर पर पशुओं के लिए संतुलित दाना मिश्रण तैयार करें, बढ़ेगा दूध उत्पाद। मौसम के अनुसार आहार देने से स्वस्थ रहेंगे पशु। दुधारू पशुओं से अच्छा दूध और मुनाफा लेने के लिए उन्हें पौष्टिक और संतुलित आहार देना बेहद जरूरी है। आज उपलब्ध विभिन्न प्रकार के व्यवसायिक संतुलित पशु आहार कंपाउंड फीड किसानों के लिए एक सुविधाजनक किंतु अपेक्षाकृत महंगा विकल्प है। डॉक्टर सुजॉय खन्ना लुवास ने बताया कि पशुपालक आसानी से सस्ता और 100% शुद्ध संतुलित दाना मिश्रण तैयार कर सकते हैं। इससे न केवल खर्च में भारी कमी आएगी बल्कि पशुओं की सेहत सुधरेगी और दूध में फैट और SNF की मात्रा भी शानदार तरीके से बढ़ेगी। सामग्री और सही अनुपात: अनाज 35 से 40 किलो, मक्का, जो गेहूं या बाजरा का इस्तेमाल किया जा सकता है। मौसम के अनुसार अनाज बदल सकते हैं, जैसे गर्मियों में जौ की तासीर ठंडी होती है और सर्दियों में बाजरा गर्माहट देता है। खल 25 से 30 किलो, प्रोटीन की पूर्ति के लिए सरसों की खल, बिनौला, कपास या मूंगफली की खल लें। चोकर और चूनी 20 से 25 किलो, गेहूं का चोकर और चना, उड़द या मूंग की दाल की चूनी छिलका पाचन तंत्र के लिए बेहतरीन होते हैं और फाइबर की कमी पूरी करते हैं। साधारण नमक 1 किलो, यह पाचन तंत्र को दुरुस्त रखता है और पशु की भूख बढ़ाता है। तैयार करने की सही विधि: अनाज को बिल्कुल बारीक आटे की तरह पीसने के बजाय दलिया पिसवाएं। खिलाने की मात्रा और सावधानियां: एक स्वस्थ पशु को उसके शरीर के रखरखाव के लिए रोजाना 1.5 से 2 किलो दाना चाहिए। अमरूद का साइलेंट किलर है फल मक्खी, बचाव के लिए फेरोमोन ट्रैप है फायदेमंद। बारिश सीजन में फल के छिलके में अंडे देकर फसल खराब करती है मक्खी। अमरूद के बरसाती फल को फल मक्खी प्रभावित कर सकती है। कीटनाशक मुक्त उत्पादन के लिए फेरोमोन ट्रैप का प्रयोग फायदेमंद हो सकता है। हाल में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर ग्वावा अमरूद भूना में किसानों को जागरूक करने के लिए फल मक्खी ट्रैपों में नए लीवर लगाए गए। प्रदेश में 17,448 हेक्टेयर में अमरूद की फसल है। पिछले साल 21,228 मेट्रिक टन उत्पाद हुआ था। प्रदेश में अमरूद की खेती हिसार, फतेहबाद, सिरसा, भिवानी, जींद, करनाल, सोनीपत, पानीपत व यमुनानगर में की जाती है। जुलाई से अक्टूबर तक फल मक्खी का प्रभाव रहता है। कृषि विज्ञान केंद्र विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया कि फल मक्खी अमरूद, आम, पपीता, नींबू की फसलों का प्रमुख कीट है। मादा मक्खी फल के छिलके में अंडे देती है। अंडों से निकले कीड़े फल के अंदर गूदा खा जाते हैं। इससे फल सड़ने लगते हैं, गिर जाते हैं व बाजार में गुणवत्ता घट जाती है। इससे 30-80% तक उत्पादन प्रभावित हो सकता है। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध। सामान्य प्लास्टिक ट्रैप 80 से 200 रुपए तक उपलब्ध हैं। लूअर की कीमत 35 से 100 रुपए प्रति पीस या ब्रांड के अनुसार अलग अलग हो सकती है। कृषि विश्वविद्यालय हिसार से भी यह किफायती दाम पर उपलब्ध हो जाते हैं। 1 एकड़ में नियंत्रण के लिए 8 से 10 ट्रैप लगाने की सलाह दी जाती है। व्यवसायिक ट्रैप लूअर किट की कीमत इससे अधिक भी हो सकती है। किसानों को उत्पादन में मिलेगा बढ़ावा। फल मक्खी की समय रखते पहचान हो जाती है। कीट की संख्या बढ़ने से पहले नियंत्रण संभव होता है। फलों का नुकसान और गिरावट कम होती है। कीटनाशकों के छिड़काव की जरूरत घटती है। उत्पादन और गुणवत्ता दोनों में सुधार होता है। बेहतर गुणवत्ता वाले फल तैयार करने में मदद मिलती है।
0: ये थे आज के कृषि समाचार और उम्मीद करते हैं कि इन कृषि समाचारों से आपका लाभ होता होगा। अगर आपके पास भी कोई कृषि जानकारी है, आप कृपया हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर भेज दें। हम उस जानकारी को सभी तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। हमारे स्टूडियो का नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। अब अपने रेडियो दोस्त भारत सोपोरी को दीजिए इजाजत। मिलते हैं अगले कृषि समाचार में।
1: मुझे भी दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।
0: नमस्कार। जय हिंद। जय भारत। वंदे मातरम।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विकसता। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो, सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का। प्रस्तुत है कार्यक्रम किदी के साथ रेडियो पॉडकास्ट। रिकॉर्ड एडिट किया भारत सोपोरी ने। स्क्रिप्ट निर्देशन और प्रस्तुतकर्ता आरजे किरने। यह है FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरनी, लेकर आई हूं किरनी के साथ रेडियो पॉडकास्ट की नई श्रृंखला। आज का टॉपिक है इनसे दूरी अपमान नहीं स्वाभिमान है। साल बीत रहा है तो गुजरे साल या और कई सालों में आप कुछ ऐसे लोगों से मिले होंगे जिन्हें आप जान तो पाए लेकिन उन्हें पहचानने में देर लगी। ये वो लोग थे और अब भी आपके आसपास होंगे जो बनते तो दोस्त या करीबी है लेकिन इनकी प्रकृति आपके हित में नहीं रहती। इन्हें गलत नहीं कहेंगे, जहरीला भी नहीं, लेकिन आपके लिए इन्हें पहचानना और इनसे सावधान रहना आवश्यक है ताकि आप शांत मन से विकास की राह पर बढ़ सके। इन लोगों को पहचानिए, पढ़कर अंदाजा लगाइए ऐसे कितने लोगों को आप इन वर्गों में रख सकते हैं। हंसोड़ आक्रमणकारी, ये तो मजाक था कि आड़ में ये लोग क्रूरता छुपाते हैं और अगर आप उनको मजाक से दुखी हो जाए तो फिर आपको शर्मिंदा भी करते हैं। कटाक्ष सबसे निचले दर्जे का हास्य है, अगर किसी का मजाक गहरा गाव करता है तो वो मजाक नहीं शत्रुता है। परवाह वाला आतताई, जो लगातार सिर्फ बोलने के लिए कहते हैं मुझे तुम्हारी फिक्र है, उन पर आंख बंद करके भरोसा करना आपके विकास की राह में बाधा सिद्ध होगा। अगर कोई आपको अपनी असलियत बता रहा है तो पहली बार में ही उस पर विश्वास कर लो। खामोश हमलावर, ये लोग आपके लिए हर काम को कठिन बना देते हैं लेकिन जब आप इनमें कोई बात पूछ लो तो इनके पास एक बेहतरीन बहाना होता है। जिन लोगों में सजा देने की प्रबल इच्छा दिखाई दे उन पर विश्वास नहीं करना, इनसे मिली मदद अदृश्य शत्रुता है। चलता फिरता विरोधाभासी, इनके कहने और करने में दूर दूर कोई साम्य नहीं होता, यानी जो कहते हैं उसे कभी नहीं मानते, कभी भी नहीं। तुम जो कर रहे हो वो इतना कोलाहलपूर्ण है कि मुझे तुम्हारा कहा सुनाई ही नहीं दे पड़ता। दोष थोपने वाले, ये वो लोग होते हैं जो किसी काम की जिम्मेदारी नहीं लेते और किसी भी बात या गलती का दोष आपके सिर पर डाल देते हैं। जिस दिन आप अपने हर काम की पूरी जिम्मेदारी लेना शुरू करते हैं, बहाने बनाना बंद करते हैं, वही दिन आपकी सफलता की ओर पहला कदम होता है। सदा आपत्ति करता, ये आपकी ऊर्जा को खत्म कर देते हैं, प्रेरणा और उत्साह को कुचल देते हैं। इन्हें कष्ट व दुर्गति का साथ अच्छा लगता है, इनसे दूर रहना स्वसमान है। कष्ट तलाशने वालों को लोगों की सोहबत चाहिए, यहाँ तरक्की की कोई जगह नहीं है, ऐसे लोगों से दूर रहे, दूरी अपमान नहीं स्वसमान है। अवसरवादी हितेशी, ये केवल तब तक हितेशी होंगे जब तक इनका मतलब आपसे जुड़ा होगा, एक बार मतलब खत्म होने पर ये आपको याद भी नहीं रखेंगे। कई इंसान धोखेबाज, कायर, मक्कार, लोभी, नकली और गैर भरोसेमंद होते हैं, लाभ खत्म होते ही गायब हो जाएंगे। शक पोषक, ये लोग नकारात्मकता को परवाह में छुपाकर व्यवहार करते हैं। मैं तुम्हें आहत होने नहीं देखना चाहता या चाहती के नाम पर शक का कीड़ा डाल देते हैं। हम हकीकत से ज्यादा अपनी कल्पनाओं में दुखी होते हैं, ऐसे लोग हमारे डर और उससे जुड़ी कमजोर सोच को पोषित करते हैं, हमारे विकास को नहीं। ये था आज का हमारा रेडियो पॉडकास्ट। अपना फीडबैक भेजिए 7056413010 पर, नंबर एक बार फिर 7056413010। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।

0: कार्यक्रम घर परिवार सुनने वाली सभी प्यारी बहनों का हार्दिक अभिनंदन है। आज के इस कार्यक्रम में मैं हूँ सोनू सलारिया और हमेशा की तरह आज भी है मेरे साथ रमेश जी।
1: जी नमस्ते और तमाम हमारे सुनने वालों को, इस कार्यक्रम के सुनने वालों को हमारा प्यार भरा नमस्कार
0: जी। और रमेश जी बताइए आप कैसे हैं?
1: जी बिल्कुल ठीक है, एज यूजुअल जैसे हैं वैसे ही रहते हैं
0: जी।
1: हमेशा इंसान को जिन हालात में रहे खुश रहना चाहिए। देखिए दो चीजें होती हैं, एक तो परेशानी में रहना, एक तो खुशी में रहना
0: जी।
1: अगर जीना है तो आप खुशी में जाइए, है ना जी। पल पल तो गुजारने हैं, इसलिए आप रो रो के गुजारें, परेशानी में गुजारें तो मेरे ख्याल में ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कहते हैं कि जो खुशियां होती हैं बड़ी मुश्किल से मिलती हैं और जो गम होते हैं वो काफी दूर तक साथ देते हैं।
0: जी हाँ, और असल जिंदगी वही है जब हम गमों में खुश रहने की कोशिश करते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, आप मुझे बताइए इस दुनिया में कौन परेशान नहीं है?
0: जी हाँ,
1: क्योंकि मुकम्मल तो कोई है नहीं,
0: बिल्कुल
1: सबको सब कुछ मिलता नहीं है।
0: जी हाँ, नहीं
1: है
0: मिलता है।
1: और इंसान चाहता तो बहुत कुछ है, सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी इच्छाओं पे काबू पा लीजिए।
0: जी हाँ, और तभी आप जिंदगी में खुश रह सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल, हम तो मानते हैं कि उस परमात्मा ने जिस हाल में इंसान को रखा है, जिस हाल में इंसान को रखा है उसी में आप खुश रहिए, और जो कुछ भी होता है इंसान के साथ वो उसकी अच्छाई के लिए होता है।
0: जी जी, काफी कुछ आपने अच्छी सी बातें
1: मुझे लगता है कि प्रवचन हो गया जी।
0: नहीं, बहुत अच्छी बातें हैं और ये जिंदगी में काम आने वाली हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल।

0: भी बताया आपने जी, और हंसते खेलते मुस्कुराती जिंदगी गुजारिए, ज्यादा बेहतर रहेगा। अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट कायम रखिए, हाँ बरकरार रखिए। मैंने देखा है कि चिनार के जो पेड़ होते हैं उनमें जब सितंबर का महीना जब होता है या अक्टूबर का महीना शुरुआती दिनों में चिनार के पत्ते जो होते हैं ना जी पीले पड़ जाते हैं
1: जी,
0: है ना जी, और फिर वो गिरने लगते हैं
1: जी हाँ।
0: लेकिन जब हम उन चिनार के पत्तों पे चलने की कोशिश करते हैं तो एक संगीत उभर आता है
1: जी हाँ।
0: इसलिए गाने का जिक्र हुआ, संगीत का जिक्र हुआ, तो मैं चाहूंगा कि हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत एज यूजुअल अगर आपकी इजाजत हो तो एक खूबसूरत गाना है

0: बहरहाल सोनू जी, ये तो इस गाने से पहले हम कोशिश कर रहे थे कि एक शुरुआत अच्छी हो, बेहतरीन शब्दों का प्रयोग करके। मैंने कोशिश की है
1: जी, और आप इस कोशिश में कामयाब भी रहे हैं।
0: और उसके बाद गाना जो था
1: बहुत प्यारा था।
0: जी बिल्कुल बिल्कुल। और हमने कहा था कि चाहतें इंसान की कभी पूरी नहीं होती हैं, लेकिन अगर ईमानदारी से अगर हम कोशिश करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चाहतें होती हैं जो पूरी होती हैं।
1: जी
0: बहरहाल, आज किस टॉपिक पे बात करेंगे?
1: देखिए, आज हम परिवार के बारे में बात करेंगे। देखिए, आज बढ़ती हुई जनसंख्या एक चिंता का विषय बन चुका है। मनुष्यों की संख्या देश में उपलब्ध साधनों की तुलना में बढ़ जाए तो देश में बेरोजगारी, निर्धनता जैसे अनेक समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं।
0: बिल्कुल सोनू जी, देखिए, गुर्बत जो है ये सबसे बड़ा कारण है हमारे भारत में बढ़ती जनसंख्या।
1: जी हाँ।
0: वो कहते ना कि एक जमाने में नारा हुआ करता था, हम दो हमारे दो। अब तो मुझे लगता है कि हम दो हमारा एक, इस तरह का नारा शुरू होना चाहिए, क्योंकि आज की तारीख में अगर हम बात करें तो पूरे भारत की जो जनसंख्या है वो तकरीबन 1 अरब और 35 करोड़ के करीब है।
1: जी हाँ, और ये बढ़ती ही जा रही
0: जी
1: है।
0: बिल्कुल बिल्कुल।
1: देखिए, परिवार हर समाज का एक महत्वपूर्ण अंग है। अगर परिवार सुखी होंगे तो समाज में सुख शांति होगी, और परिवार तभी सुखी रह सकता है अगर परिवार छोटा है।
0: बिल्कुल,
1: यानी
0: छोटा परिवार सुखी परिवार।
1: जी हाँ, परिवार में एक या दो बच्चे हो ताकि माता पिता बच्चों का पालन पोषण, शिक्षा का प्रबंध अच्छे से कर सके।
0: बिल्कुल सही बताया आपने।
1: देखिए, परिवार में अधिक बच्चे होने से माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा तथा उनका अच्छे से पालन पोषण तो नहीं कर पाते हैं, और ऐसी फैमिलीज में जहां बच्चे ज्यादा होते हैं, बच्चे कुपोषण का शिकार हो जाते हैं, जिससे उन्हें अनेक प्रकार के रोगा घेरते हैं।
0: जी बिल्कुल। भारत सरकार या हेल्थ महकमा जो है, सेहत जो महकमा है, इस तरह की बहुत सारी योजनाएं हैं जिनसे हम अपने परिवार को छोटा रख सकते हैं। और पढ़े लिखे सभी हैं आजकल, और चाहिए कि जितना छोटा परिवार हो उतना सुखी परिवार रहता है, और परिवार छोटा हो तो ज्यादा बेहतर है।
1: और हम अपनी फैमिली को पूरी सुख सुविधाएं आसानी से दे सकते हैं।
0: बिल्कुल। और भारत की जो गुर्बत है या दिन ब दिन महंगाई या गरीबी के कारण जब हम पूरी तरह से अपने परिवार का पालन पोषण नहीं कर पाते हैं, तो उसका कारण यही है कि आपके घर में 3 बच्चे 4 बच्चे 5 बच्चे होते हैं तो उनका पालन पोषण नहीं हो पाता है ठीक ढंग से। तो जाहिर है कि छोटा परिवार सुखी परिवार
1: होता है।
0: बिल्कुल बिल्कुल। अरे आजकल तो काफी ऐसी सुविधाएं हैं जिनसे आप आसानी से अपने परिवार को छोटा रख सकते हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम इन बातों पर अमल करने की कोशिश करें। मैंने देखा दूरदराज के यहाँ जितने भी गांव हैं उनमें अवेयरनेस की कमी है।
1: जी,
0: क्योंकि वहां पे मैं एक जगह पे गया तो मैंने देखा वहां उस परिवार में 9 बच्चे, और मैं हैरान हो गया। तो जाहिर है कि इस तरह की अवेयरनेस बहुत जरूरी है, और आपने बड़ा अच्छा टॉपिक चुना है, और इसके लिए हम आपको बधाई देते हैं।
1: जी शुक्रिया।
0: और चलिए हम आपको एक गाना हम सुनवाते हैं।
1: जी सुनाइए।

0: बहरहाल खाने पीने की बात चली है, इससे पहले आपने खाने पीने की बात की थी कि किस तरह का खान पान होना चाहिए ताकि आप मोटापे को कंट्रोल में रखें। आज क्या रेसिपी है, क्या खिलाएंगे आप?
1: जी, आज मैं मसालेदार पॉपकॉर्न बनाना सिखाऊंगी। देखिए, पॉपकॉर्न तो वैसे हर कोई बहुत पसंद करता है, लेकिन कुछ चटपटा बनाने के लिए मैं कुछ इस तरह से बता रही हूँ।
0: पॉपकॉर्न क्या होते हैं जी? अंग्रेजी में का शब्द है, मुझे लगता है वो मक्की की।
1: देखिए, इसे बनाने के लिए सामग्री कुछ इस तरह से है। सबसे पहले हमें 1 कप मकई के दाने चाहिए, 1 बड़ा चम्मच ऑलिव ऑयल, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच आप चाट मसाला ले लीजिए, 2 बड़े चम्मच नींबू का रस।
0: जी बिल्कुल, आपका मोबाइल ऑन था तो इसलिए वो आवाज भी आ रही थी। उसके
1: जी,
0: बाद क्या करना पड़ेगा?
1: अब इसे बनाना होगा। विधि कुछ इस तरह से है। सबसे पहले एक गहरे नॉनस्टिक पैन को गैस पर रखकर आप गर्म करें। 1 बाउल में मकई के दाने रखें और उसमें ऑलिव ऑयल डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब उन्हें गर्म पैन में डालें, नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर डालें और अच्छी तरह मिला लें। पैन को ढक दें और मकई के दानों को फूटने दें। जब मकई के सब दाने फूट जाएं तो इसमें चाट मसाला और नींबू का रस छिड़के। अब इन्हें अच्छी तरह टॉस कर लें और तुरंत गर्म गर्म परोसें और मसालेदार पॉपकॉर्न का मजा लें।
0: आपकी खास बात ये रहती है जब आप ये रेसिपी बताते हैं तो उन जो हमारी ये सारी चीजें घरों में उपलब्ध रहती हैं, तो जिस वजह से हर कोई ये बना सकता है ना जी?
1: जी बिल्कुल, और ये चीजें बहुत आसानी से बन भी जाती हैं।
0: जी, बच्चों में ये चीजें ज्यादा, वो इसके बड़े शौकीन रहते हैं,
1: और
0: बड़े
1: आजकल
0: बड़े
1: बड़े
0: भी।
1: भी पसंद करते
0: जी
1: हैं।
0: बिल्कुल बिल्कुल, आमतौर पे जब आप थिएटर जाते हैं फिल्म देखने, आजकल तो वैसे कम लोग देखते हैं फिल्में थिएटरों में, लेकिन वहां पे इन चीजों का इनको इस्तेमाल में लाया जाता है। या आप लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो वहां भी हम इस तरह का इस्तेमाल करते हैं इन चीजों।
1: तो कुछ चटपटा खाने को मन करता है तो इस तरह आप बनाकर खा सकते हैं।
0: बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी। अब मुझे लगता है कि
1: वक्त हो चला
0: हाँ
1: है।
0: बिल्कुल, हमारे इस प्रोग्राम का समय मुकम्मल हुआ चाहता है। मैं चाहूंगा अपने तमाम सुनने वालों से इजाजत, और आपको इस गाने के साथ मैं छोड़ देता हूँ। नमस्कार।

0: प्रस्तुत है कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 11। कार्यक्रम का शीर्षक है इंतजार। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुतकर्ता आरजे किरनी।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो विदस्ता 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। एक आहट सी सुनाई देती है, एक परछाई सी दिखाई देती है, दिल के किसी कोने में एक आवाज उठती है, कोई है जो आने वाला है, ये शायद कोई है जो लौट कर नहीं आएगा। दोस्तों, इंतजार सिर्फ वक्त का नहीं होता है, कभी एक पल का होता है, कभी एक उम्र का। और इसी इंतजार के एहसास के साथ मैं हूं किरनी, लेकर आई हूं एक महफिल रेट्रो हिट्स की, जिसमें होंगे कुछ बीते पल, कुछ खोई हुई यादें और वो गीत जो इंतजार का एहसास दिलों तक ले जाए। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम रेट्रो हिट्स, जिसका टाइटल है इंतजार, जहां हर सुर एक याद है और हर धुन एक कहानी। कोई तो आएगा ख्वाब सजाने, कोई तो होगा दर्द मिटाने, बस एक उम्मीद का दामन थामे हम रोज किसी का इंतजार करते हैं।

0: तेरी बातों में ऐसी बात थी कि दिल पहली दफा बेबिसा हो गया, मोहब्बत का रंग ऐसा छाया कि हर दिन एक नया ख्वाब हो गया।
1: रूप तेरा मस्ताना प्यार में।

आंखों ने देखा नहीं उसे मुद्दतों से, पर हर नजर जाने क्यों सिर्फ उसी की तलाश करती है। कभी भीड़ में, कभी तन्हाइयों में, क्या ये मोहब्बत है या बस एक आदत।

मोहब्बत का असल इम्तिहान तो इंतजार ही होता है, वो पल वो घड़ियां जो बस रुक सी जाती हैं, एक चेहरा जो बस यादों में जिंदा रहता है।

कुछ इंतजार कभी पूरा नहीं होते, कुछ सूरतें सिर्फ यादों में जिंदा रहती हैं, कभी एक पुरानी डायरी की तरह, कभी एक भूल गए गीत की तरह।

इसके साथ ही रेट्रो हिट्स का आज का अंक खत्म हो रहा है। मिलेंगे किसी और प्रोग्राम में, तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए।

आप सुन रहे थे कार्यक्रम रेट्रो हिट्स एपिसोड 11। कार्यक्रम का शीर्षक था इंतजार। रिकॉर्ड किया भारत सोपोरी ने, एडिट किया निया जैन ने, स्क्रिप्ट निर्देशन एवं प्रस्तुत किया आरजे किरनी ने। ये थी FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो वितस्ता की प्रस्तुति।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो विदस्ता अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।
1: पेश है कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। हमारे आज के मेहमान हैं मिस जोबन रूप छिन्ना जी। प्रस्तुत करेंगे आरजे सेजल।
2: नमस्कार, सत श्री अकाल। तुसी सुन रहे हो FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता। हम सफर जिंदगी दा ते कार्यक्रम शुरू हो चुकिया है काव्य गोष्ठी भाग 7 आरजे सेजल दे नाल। ते अज फेर शायरी दा समा बनांगे पंजाबी विच। ते ए समा बनन लई साडे नाल मौजूद ने साडे अज दे मेहमान जोबन रूप छिन्ना जी, जो पेशे तो एक टीचर ने ते अपने फ्री टाइम विच लिखदे वी ने। हुण तक काफ़ी अवार्ड्स जिवें यंग राइटर अवार्ड प्राप्त कर चुके ने ते काफ़ी पंजाबी कवि दरबारां विच भी अपनी हाजिरी दे चुके ने। अज साडे नाल ओ जुड़े ने अंबरसर तो। ते जोबन जी, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है अज दे कार्यक्रम विच।
3: जी बहुत बहुत शुक्रिया।
2: अच्छा जोबन जी, ए ते जिहड़ा परिचय मैं जानदी सी तुहाडे बारे ओ मैं दित्ता, ते अपने शब्दां विच मैं तुहाडे बारे श्रोतावां नूं दस्या। ते हुण ओ चीज मैं जानना चाहवांगी जो साडे कोलो रह गई हो या तुसी एक्स्ट्रा दसना चाहो किसी कविता राही या अपने शब्दां राही।
3: जी वैसे तो तुसी मेरे बारे दस ही चुके हो। ऐसे पेशे तो मैं टीचिंग दी जॉब कर रही हां।
2: जी जी।
3: एमए पंजाबी कीती हुई है मैं। पहला उस तो मैं मेडिकल फील्ड च स्टडी कीती सी, जिवें बीएससी मेडिकल कीती। उस तो बाद जिवें मेरा लिटरेचर च काफी इंटरेस्ट सीगा
2: जी,
3: ते उस तो ओ ही सोच के मैं एमए पंजाबी नु करना चाहिया। ते ओ मेरा एक मकसद ए भी सी कि मैं जिहड़ा लिटरेचर सीगा उन्हां नु भी गहराई तो समझना चाहुंदी सी, क्योंकि जिवें लिटरेचर नाल जुड़ी तो हुई सी पर मैनू नहीं पता हुंदा सी कि केड़ी चीज पढ़ा, केड़ी ना पढ़ा, केड़ी पहला पढ़ा, है ना, जिहदे नाल मेरी जिहड़ी लिखता है वो सुधर सके, उहदे च सुधार आ सके, किवें करां। ते इस तरीके दे नाल जदों मैं काफी सारे राइटर्स दे नाल जुड़ी हां ते उन्हां ने भी मैनू राय दित्ती सी कि तुसी एमए पंजाबी जरूर करियो, क्योंकि जदों आपां इक सिलेबस नू पढ़दे हां ते उहदे विचों ही सानू होर भी चीजां दा पता लगदा।
2: जी जी, पढ़न नाल ही काफी ज्ञान साडा वधदा है ते ओहदे वधन नाल ही साडी वोकैबुलरी भी वधदी है, जो कि शब्द असीं यूज कर लैने आ साडी कवितावां विच, है ना। ते लिटरेचर ते भी आवांगे, बुक्स बारे भी तुहाडे कोलों पुछांगे, लेकिन पहले ये पुछना चाहवांगी कि टीचिंग ते प्रोफेशन विच आन तो पहलां दा ही तुसी लिखदे आ रहे हो, ते यह जानना चाहवांगी यह सफर शुरू कदों होया, तुसी कदों लिखना शुरू किया या फिर तुहानू कदों लग्या कि मैं लिख सकदी हाँ।
3: जी लिखना तो शुरू मैं बचपन तो ही, जिवें मैं 13 साल दी सी जदों मैं पहली वारी कविता लिखी।
2: जी जी,
3: उदों ही मैं 8th क्लास सीगी जदों मैं लाइब्रेरी जाना शुरू, मतलब कि जानते तो हुंदे सी पर जदों मैं लिटरेचर नाल जुड़ी हां, कहानियां पढ़दी हुंदी सी छोटी हुंदी, फिर कवितावां पढ़ियां, फिर मैनूं जेहन च ख्याल आना कि ये जिहड़े कविता लिखदे ने, कहानी लिखदे ने, ये लोग कौन होणगे, इन्हां दे अंदर इह जिहियां चीजां किवें आउंदियां होणगियां, ये ख्याल जिहड़े उदों मेरे छोटी उम्र दे विच पनपण लग गए। फिर उस तों बाद हौली हौली जिवें मन लो कि किसे दे अंदर वो टैलेंट छुपिया हुंदा है ना, वो किसे तरीके दे नाल बाहर निकलना हुंदा है। ते ओही हल्ला शेरी होई कि मेरा पंजाबी दे अध्यापक ही सीगे, उन्होंने मैनू उन्होंने सारी क्लास में एक्चुअली कहा कि तुसी ना कुछ लिख के लैके आयो, जिवें ओ थोड़े कहिंदे कि बच्चां दे अंदर दी क्रिएटिविटी जिहड़ी आ ਉਹ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਸਾਰੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਰੈਂਡਮਲੀ ਏਦਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਓ, 2-3 ਛੁੱਟੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਟੈਲੈਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਛੁਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਲਿਖ ਲਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਉਸੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਮਿਲੇ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ੀ, हाँ जी शाबाशी मिले तो वो फिर बच्चा होर लिखन दी कोशिश करता है, होर पढ़न दी कोशिश करता है।
2: जी
3: फिर मैं उस टाइम जेड़े स्कूल दी लाइब्रेरी च जिन्नियां भी बुक्स सीगियां पंजाबी दे काव्य दे रिलेटेड, फिर मैं सारियां पढ़नियां शुरू कीतियां। इस तरीके दे नाल हौली हौली फिर मेरी कविता विच भी सुधार आउंदा गया।
2: जी, किते ना किते टीचर्स भी बहुत वड्डा रोल प्ले करदे आ एक बच्चे नू किते ना किते अपनी लाइफ च करियर विच स्टैंड करन वास्ते। ते
3: जी, जी।
2: सफर बारे ते तुसी दस्ता, होर भी गल्लां करांगे सफर तो जुड़ियां, लेकिन शो दा नाम काव्य गोष्ठी है। ते सब
3: जी।
2: तो पहला असीं शुरुआत कर लेने शो दी एक कविता नाल। ते जे
3: जी।
2: तुहानूं अपनी पहली लिखी हुई कविता याद होए तुसी शेयर करना चाहो ओ, या कोई भी तुहाडी पसंदीदा कविता तुसी साडे श्रोतावां नूं सुनाना चाहो ते तुसी सुना सकदे हो।
3: जी, जिहड़ी पहली कविता लिखी सी ओह ते चलो बचपन च लिखी सी ते
2: जी जी
3: गहराई भी इन्नी नहीं सी, पर मैं थोड़ा जिहा पहरा याद आउंदा, मैं ओह कोशिश करांगी। ओह लिखी सी कि भारत मेरा देश है प्यारा, वारे वारे जावां मैं इस तों, लगदा बड़ा प्यारा ते न्यारा, ये गुरुआं पीरां दा भारत, ये ऋषियां मुनियां दा भारत, ये फुल्लां दी खुशबू तों न्यारा, वारे वारे जावां मैं इस तों, लगदा बड़ा प्यारा ते न्यारा। जिवें बचपन से ही तो ख्याल ही होने किसी ये लिखन ली।
2: बहुत खूब, बहुत ही प्यारी कविता सी। वैसे बचपन च भी लिखी, लेकिन तुसी लिखी बहुत खूब। ते अगे वधदे आ, पिछले प्रश्न नाल ही जुड़िया एक सवाल होर पूछना चाहवांगी कि तुसी लिखते तो बहुत सोहना हो, ते तुसी टीचिंग दा प्रोफेशन ही क्यों चुनिया? तुसी एज अ राइटर भी अपना प्रोफेशन चुन सकते सी, ते इस प्रोफेशन विच ही क्यों आना तुहानू लग्या ठीक?
3: हाँ जी, ये सहज सुभाई जदों मैं एमए पंजाबी की है, उस तो बाद मैं सर्च आउट किया कि केड़ी जॉब करा, ते इदा स्कूल्स दे विच रिज्यूम दिते सीगे, ते उदे नाल ही मतलब कि फिर मैनू जॉब मिल गई। हुण वधिया लगदा है कि बच्चों दे नाल रहना, उन्हां दी साइकोलॉजी नू समझना, फिर खुद मतलब कि अपनी लाइफ जिहड़ी असीं स्कूल दे विच बिताई है उस लाइफ नू फिर मतलब कि इंजॉय करना अच्छा लगता है कि बच्चों के नाल, क्योंकि अजकल के बच्चे भी बहुत उन्होंने अंदर भी क्रिएटिविटी है। जो असी हाँ जी जो असी अपना कुछ उन्होंने नाल शेयर करते हैं तो उन्होंने अंदर जी क्रिएटिविटी होंगी है उन्होंने तो भी हम बहुत सारे क्वेश्चन पुट करते हैं, जिन्होंने नाल मैनू लगता है कि मैं उन्होंने नहीं सगों मैं भी उन्होंने को बहुत कुछ सीखती हूँ।
2: ते तुसी स्कूल विच भी बच्चियां नू कविता कदे सुनांदे हो, या बच्चे कहंदे ने मैम नू कविता सुनाने वास्ते, या तुसी एक स्ट्रिक्ट टीचर दे रूप विच उत्थे रहंदे हो?
3: नहीं, स्ट्रिक्ट तो नहीं रहिंदी, बट ये है कि मैं उन्होंने ये नहीं दसा होया कि मैं कविता भी लिखदी हाँ उस तरीके दे नाल, मतलब कि उन्होंने ये नहीं पता, पर वैसे मैं उन्होंने जिस तरीके दे नाल कवितावां पढ़दी हाँ, जां कोई उन्होंने सिलेबस च कविता होंदी है वो जरूर मैं अपने अंदाज च सुनाउनी हाँ जिहड़ी उन्होंने वधिया लगदी।
2: क्योंकि बच्चे अक्सर अपने टीचर नाल उदो ही अट्रैक्ट होंदे ने जदों टीचर कोई लिटरेचर या कोई कहानी सानू सुनांदे ना बहुत इंटरेस्टिंग तरीके नाल, ते सानू भी बहुत वधिया लगदा सुन के ओह चीज़ां। ते नाले तुसी कहा कि मैं बचपन विच काफी बुक्स पढ़दी हुंदी सी, ते केड़ी ओह बुक रही है बचपन विच जिहड़ी तुहानू हजे तक याद है पढ़ी हुई हो कोई बुक?
3: हाँ जी, मैं बचपन दे विच ते पहला सब तो पहला जिहड़ी मैं कहा कि बहुत इंटरेस्टिंग लाइक इंटरेस्ट लैके पढ़ी सी ओह सीगी अल्फ लैला दीआं कहानियां, ओह मैनूं अज भी बहुत पसंद ने, ओह मैं ओह बहुत इंटरेस्टिंग नाल ओह पढ़दी हुंदी सी। उस तो बाद जिहड़ियां मैं काव्य दीआं किताबां पढ़ियां ने ओह मैं सुरजीत पात्र दीआं जी दीआं पढ़ चुकी सी, उदों शिव कुमार बटालवी जी दीआं पईआं हुंदीआं सी उत्थे ओह पढ़ियां है, भाई वीर सिंह जी दीआं किताबां सी ओह पढ़ियां। इस तरीके नाल जिहड़ियां जिहड़े मटीरियल मैनूं उत्थे मिलदे सी अवेलेबल सी लाइब्रेरी च ओह फिर मैं उत्थे पढ़े है।
2: बहुत खूब, क्योंकि शिव कुमार बटालवी जी हो गए उन्हां दीआं कवितावां बहुत ही प्रचलित ने, ते हुण भी असीं काफ़ी उन्हां दी कवितावां सुनदे हाँ। ते राइटिंग दी गल करिए, ते राइटिंग विच तुसी केड़ा जैनर लिखना पसंद करदे हो, फेवरेट जैनर जे मैं पुछना चाहवां तुहाडा?
3: जी, ये तो मतलब कि ओही है ना कि जिहड़ी कविता है ना ये खुद ब खुद ही आ जाती है, पता नहीं हुंदा कि केड़ी जैनर च उतरनी है, मन च ख्याल केड़े दे आ जाने आ।
2: जी,
3: कई वारी सुते पिआं नूं वी कई वारी कविता जिहड़ी आ जगा दिंदी है, कई वारी मेरे नाल वी इदां होया। ते कदी तां मैं मुहब्बत ते लिख दिंदी हाँ, कदी मैं अध्यात्मक ते लिख दिंदी हाँ, कदी मैं दुनियावी जिहड़ियां चीजां हुंदियां जिवें सोसाइटी है ओहदे ते लिख दिंदी हाँ।
2: जी,
3: ਕਦੇ ਵੀ ਕੁਛ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
2: ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇੱਕ ਜੈਨਰ ਦੀ ਕੋਈ ਕਵਿਤਾ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਹੁਤ ਕਰੀਬ ਹੋਏ ਉਹ ਕਵਿਤਾ?
3: ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਕਵਿਤਾ ਹੀ ਹੈ
2: ਜੀ।
3: ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸਦਾ ਹਮਸਫ਼ਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਕਵਿਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਤਵਾਰ। ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਕਿਸ਼ਤੀ ਮੇਰੀ, ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਪਤਵਾਰ, ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ ਅੱਗ ਦਾ ਦਰਿਆ, ਮੈਂ ਦਰਿਆ ਵਿਚਕਾਰ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਖੇਚਲ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਨਾ ਖੇਚਲ ਕਰ ਤੂੰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮਿੱਟੀ, ਮੈਂ ਨਾ ਲੋਚਾਂ ਸੋਨਾ ਚਾਂਦੀ, ਮੈਂ ਲੋਚਾਂ ਸਤਕਾਰ। ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਰੁੱਖ ਤੇ ਹਿਲਦਾ ਪੱਤਾ ਜਾਂ ਪੱਤੇ ਤੇ ਪਾਣੀ, ਤੇਰੀ ਹਸਤੀ ਅੱਗੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਿਰਦਾਰ, ਜਿਸ ਰੈਬਰ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੇ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਅਧਿਆਤਮਕ ਵਾਲਾ ਸ਼ੇਅਰ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਹਿਬਰ ਹੱਥ ਡੋਰ ਹੈ ਮੇਰੀ ਐਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਰਖੇ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਵੇਂ ਕਰ ਖੋ ਲੈਂਦਾ ਤਲਵਾਰ। ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਏ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਟਲ ਜਾਣਾ, ਰੂਪ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਹੈ ਟਲ ਜਾਣਾ, ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਰੂਹ ਮੇਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਲੈ ਪਿਆ।
2: ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਖੂਬ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਉਮਦਾ ਕਵਿਤਾ। ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੂਮੈਨ ਦਾ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਾਰਟਨਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੇ।
3: ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ
2: ਜੀ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੀਤ ਵੱਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸੌਂਗਸ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ।

थे कार्यक्रम काव्य गोष्ठी एपिसोड 7। हमारे आज के मेहमान थे मिस जोबन रूप छिन्ना जी। प्रस्तुत किया आरजे सेजल ने। रिकॉर्डिंग व एडिटिंग दीपक कश्यप। निर्देशन भरत सोपोरी।

नमस्कार, मैं हूं रमेश मराठा। पिछले एक साल से आप रेडियो विविधता के प्रसारण 90.0 MHz पर अंबाला इंडिया से सुन रहे हैं। भाइयों और बहनों, रेडियो विविधता हम सफर जिंदगी का। भारत सोपोरी की जेर निगरानी में रेडियो विविधता से प्रसारित हो रहे हर एक कार्यक्रम काबिले तारीफ है। रेडियो विविधता की आवाज घर घर की आवाज। रेडियो विविधता की पूरी टीम को शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। शुभ

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। आप जी सुन रहे हो 90.0 FM ते रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा। आप दा अपना रेडियो, आप जी दी आवाज दिल तो। रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी दा।

यो सा FM 90.0 MHz के प्रसारण रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का अपने उम्मीद से के हमारा प्रसारण आपने पसंद आ रहा होगा। ऐसे ही अच्छे अच्छे गीत सुनने खातर सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: यू आर लिसनिंग 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
2: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
3: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
2: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
3: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
2: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
4: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
5: सुने अपने पसंदीदा गाने सिर्फ 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर। अंबाला कैंट का अपना रेडियो, रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

तुम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

तू जंगल की हिरणी बता क्यों, तू जंगल की हिरणी बता क्यों, एकली भटके।

साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, अरे साथ चलन की तैयारी कर ले, राम रट के।

थम सुन रहे हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, अंबाले का अपना रेडियो। सुनते रहो अपने पसंद के गाने।

0: एक ही ताजमहल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे प्रसारण सुनते रहिए।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता अंबाला का अपना रेडियो।

0: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, अंबाला का अपना रेडियो।
1: तुसी सुन रहे हो अंबाला दा अपना रेडियो।
2: कर दिया मेरे ते जो सर्दियां तेरे नाल फुटवा कराउण जो
1: रेडियो वितस्ता
2: असले पौन पटाके
1: सुन मेरे दिलदार 90.0 मेगा

0: सुनते रहो अपने पसंदीदा की। आप सुन रहे हैं अंबाला कैंट का पहला कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर, रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7054130010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो विथस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

पहले तो बांधी निगाहों की डोर, अब हमसे कहती हो चल पीछा छोड़।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: सारयां नूं मेरी राम राम। थम सुन रहे रेडियो वितस्ता अम सफर जिंदगी का FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पा। मैं हूं थारी रेडियो सखी नेहा दाकड़, अर्थारा स्वागत करूं हूं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ के प्रसारण मा। मारा आज का कार्यक्रम है हासिये पा। हासिये का अर्थ हुआ भी जद कोई चीज जमी किनारे पा जा और उस ते आगा फिर कुछ नहीं हुंदा, वह आखरी हुआ। आज हम बात करांगे ऐसी जिंदगी के बारे में जिनने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करया और बहुत सारी परेशानियां उठाकर समाज में आगे बढ़ी। मैं बात कर रही हूँ फतेहपुर 126 गांव की सुमित कौर के बारे में, जिनके पास 9 लड़कियां थी और कोई लड़का नहीं है था, और इतनी मुश्किल टाइम में भी अपना गुजारा करया। घर में कोई नौकरी पैसा ना होने के बाद भी अपनी सारी लड़कियां नू पढ़ाया लिखाया का अच्छे संस्कार दिए और उन्नू काबिल बनाया, और इस मां ने दिन रात मेहनत करका अपनी लड़कियां नू इस लायक बनाया भी वे अपने पैरा पा खड़ी हो सका। इनके जीवन के संघर्ष के बारे में और जानने वास्ता आइए बात करा है सुमित कौर ते। राम राम चाची।
1: राम राम।
0: और चाची ठीक ठाक?
1: ठीक है।
0: तो चाची थारे पास 9 लड़कियां हैं और तन्ने इनका पालन पोषण किस तरह करया और इनके पालन पोषण वास्ता क्या क्या तन्ने काम करे?
1: मैंने तो मजदूरी करी बेटे, खेता मा काम करया, ठीक है, घर मा भी लोग किसी किसी के मां भी कर कर का देखा, सारा कुछ करा। मैंने तो मजदूरी करी मने, यानी कि अपना पालन पोषण बच्चा का खुद करया।
0: और समाज ने तेरा कितना साथ दिया? लाले अपने रिश्तेदारों आ जानकारों आ इनने तेरी कितनी मदद करी?
1: कोई किसी की मदद नहीं करता बेटे, सब मुंह मोड़ा। माड़े टाइम में कोई किसी का साथ नहीं देता, ठीक है, अपने आप करना पड़ा, जो भी कुछ करना पड़ा, किसी का कोई सहारा नहीं होता है।
0: और चाची जिस तरह घर में कोई रोजगार भी का साधन नहीं है था, कोई काम भी नहीं है था, तो कौन सा काम करे कराती भी जिससे घर का काम चल जाता और अपने घर का गुजारा चला था, और जिस तरह पेट की भूख हुआ भी है तो जिंदगी के रंग दिखा दे। तन्ने कौन कौन से रंग देखे अपनी जिंदगी में?
1: बहुत रंग देखे बेटे हमने भी, बहुत ज्यादा घर में मतलब बहुत मुसीबतें काटी है, तो मेहनत मजदूरी करी।
0: ठीक बात चाची। और आज तन्ने कितनी लड़कियां का ब्याह कर दिया और जोन सी हो रहे हैं मैं क्या कुछ कर रही?
1: 4 लड़कियां का ब्याह कर दिया, एक इंजीनियर का कोर्स कर रही, उससे जॉब कर रही बड़े वाली जो कमारी है, और एक 10वीं माँ एक 8वीं माँ पढ़ रही है भी।
0: और चाची जिस तरह तो गोमा रहा तो तेरे पास लड़कियां थी, तो तनु समाज के लोग भी कुछ कहाँ थे भी हाँ इस पर तो लड़कियां इस पर कोई लड़का नहीं है, इस तनु कुछ कहा लोगों ने भी?
1: बतेरा कुछ कहा लोग भी बोगे, पर मतलब ये था भी अपने बच्चों भी सही से अच्छे संस्कार दे रखे, अपने आप भी अच्छे, उसमें कोई मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम किसी का कोई कुछ ही कहीं जो कोई हम मन पर नहीं करते हैं। तो आज मेरी लड़की उन्हें मतलब वही लड़की मेरी बच्चन बहनों भी पढ़ाया लिखाए भी रही है, घर का गुजारा भी करवा रही है, हमारे गेन लग का सारा कुछ कर रही है नेके।
0: अरे चाची जिस तरह तेरी लड़कियां का ब्याह हो गया तो उन्हें ससुराल माँ मैं अपने किस तरह अपने तेरे संस्कार दिख रहे उन्हें, और ससुराल वाले तन्नू क्या कहा भी हाँ तन्ने अपनी बेटियां नु अच्छे संस्कार दे रखे?
1: हाँ बेटे बहुत अच्छे कहा भी, मारा तो घर तन्ने मतलब यानी का स्वर्ग बनवाया दिया, कोई माड़ा बोल नहीं बोलता मेरे बच्चों, बहुत खुश है बेचारे।
0: ठीक बात चाची। तो चाची आज के समाज ते तो क्या कहना चाहा, इस रेडियो के माध्यम ते क्या संदेश देना चाहा भी जद जिंदगी जमी हासिए पा आ जा तो क्या हार माननी चाहिए अक उसका सामना करना चाहिए?
1: कभी भी हार नहीं माननी चाहिए, मतलब अपना संघर्ष करना चाहिए, कभी भी मतलब जिंदगी में कुछ भी हो कुछ ना अपना अपना मतलब सहारा नहीं मतलब वो छोड़ना नहीं चाहिए भी, जो भी हम बिल्कुल मरपा तो ये काम होता ही नहीं है जी, तो मतलब हम लोग कर का दिखाना चाहिए अपना, मतलब बिल्कुल सहारा नहीं छोड़ना चाहिए, अपनी मेहनत मजदूरी करो, अच्छे काम करो,
0: चलते रहना चाहिए
1: यानी
0: क्या चाहे कोई साथ दे रहा चाहे नहीं
1: भी दे रहा कोई, अपना संघर्ष नहीं छोड़ना चाहिए कभी भी।
0: ठीक बात चाची। तने बहुत मेहनत मजदूरी करके अपनी लड़कियां नु पालिया और आज तेरी लड़कियां ऐसी जगह खड़ी भी जहां सब हां कहां भी यो सुमित कौर की लड़की है और इतनी अच्छी जगह पहुंच गई है, यह बात तेरी बिल्कुल सही है चाची। और चाची न्यू तो कहा भी कोई किसी की मदद नहीं करता, अपनी मदद अपने आप करनी चाहिए भी, जो मोहब्बत का यहाँ दिलामा बीज बो नहीं सकते वह दौलत खा का जो औरा के आंसू धो नहीं सकती, उस आंख ते बे आंख बेहतर आदमी जो आंख किसी के दुखमा रो नहीं सकती, यह बात तो बिल्कुल सही है भी, उस जोन सी दौलत आ उस ते तो बेदौलती बंदा ठीक है जो किसी के दुखमा साथ नहीं दे सकती। तो तने समाज ते यही आज संदेश दिया भी कदी अपनी हार ना मानो और चलते रहो।
1: हाँ जी हाँ जी।
0: और क्या कहना चाहगी समाज ते जिनके पास आज भी समाज में ऐसे लोग हैं जिनके पास लड़कियां ही लड़कियां, तो उन्हें क्या कहना चाहगी भी उन्हें क्या करना चाहिए?
1: मैं मतलब समाज नु यही कहना चाहूंगी, बेटियां जो है तो बेटों से कम नहीं है। मैं बीमार हो गई थी तो मैं बिल्कुल किनारे पर बैठ गई, तो मेरे इन्हीं लड़कियों ने जवाइयों ने मेरे मतलब इतना सहारा दिया भी मेरे को मरी को भी उठा दिया इन्होंने। इन्होंने अच्छी शिक्षा दो, अच्छा पढ़ाई लिखाई करवाओ इन लड़कियां नो, तो मतलब अपने संघर्ष करो यानी के। तो मैं यही कहना चाहूंगी लड़कियां बेटों से कम नहीं है, तो इनो पढ़ाओ लिखाओ अच्छे संस्कार दो इनको।
0: और फिर भी तो चलती रही और तो चल का आज ऐसी जगह पहुंच गई भी जहां सब तनु सलूट कर रहे भी हां इसकी लड़कियां इतनी अच्छी जगह पहुंच गई। बहुत बहुत धन्यवाद चाची, तन्ने अपनी संघर्ष भरी जिंदगी के बारे में मनु बताया, हमारे श्रोता ने इसके बारे में जानकारी दी और किस तरह तो अपने परिवार नु आगे लेके आई, तन्ने यो भी बताया आज हमारे समाज नु इसी चीज की जरूरत आ, जिनके पास लड़कियां लड़कियां है उन्नु भी बहुत अच्छी बात मिली भी हां मानु भी किस तरह उठना चाहिए और किस तरह आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद चाची।
1: आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे पास आया, आप हमारी बात समाज में आगे बताएंगे करेंगे रेडियो के माध्यम से, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।
0: हम सुन रहे थे मारा कार्यक्रम हासिए पा और हम अगला कार्यक्रम लेका फिर थारे ते रूबरू होवांगे। जैथन ने भी लगा भी थारे नेड़ा भी कोई ऐसा व्यक्ति है जिसकी जिंदगी बहुत संघर्ष भरी हो और जिनने अपनी जिंदगी में बहुत कठिनाइयों का सामना करे हो, तो थम मन ने मारे स्टूडियो के नंबर पर फोन या मैसेज करका बता सका। मारा नंबर आ 7056413010 7056413010। अच्छा इम मैं चलू हूँ, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।

आप सुन रहे हैं कम्युनिटी रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त नैना, लेकर आई हूं आज के कृषि समाचार। बाजरे की बिजाई के लिए जुलाई का पहला पखवाड़ा उत्तम, हर साल नया बीज ही लाएं। बरानी क्षेत्रों में मानसून की पहली बारिश के बाद शुरू करें बिजाई। बाजरे की बिजाई के लिए जुलाई माह सबसे उत्तम समय है। बरानी इलाकों में मानसून की पहली वर्षा होने पर ही बिजाई करें, हर साल नया बीज ही लाएं। हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर बीआर कंबोज ने बताया कि खेत को दो या तीन बार जोतकर फौरन सुहागा लगाकर अच्छी तरह तैयार करें ताकि घास फूस ना रहे। एक एकड़ के लिए 1.5 से 2 किलोग्राम बीज चाहिए। खेत में सही उगाव के लिए बिजाई खुड्डों में इस तरह करें कि बीज के ऊपर 2 से 3 सेंटीमीटर से अधिक मिट्टी ना पड़े। खुड्डों का फासला 45 सेंटीमीटर रखें। अर्ध संचित क्षेत्रों के लिए HHB 299 और बारानी क्षेत्रों के लिए HHB 67 संशोधित को बुआई के लिए अनुमोदित किया गया है। यदि बीज पहले से उपचारित ना हो तो डाउनी मेल्ड्यू या हरी बाली रोग की शुरुआती रोकथाम के लिए बीज को मेटलेक्सियल 6 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर देना चाहिए। उर्वरक का प्रयोग मिट्टी परीक्षण के आधार पर करें। बिजाई के समय 16 किलोग्राम नाइट्रोजन और 8 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ बरानी क्षेत्रों में तथा 24 किलोग्राम नाइट्रोजन व 25 किलोग्राम फास्फोरस प्रति एकड़ संचित क्षेत्रों में अवश्य डालें। बाकी नाइट्रोजन की बची हुई मात्रा को 2 बराबर भागों 18-18 किलोग्राम में बांटकर पहली बार पौधों की छटाई के बाद और दूसरी बार सिट्टे बालियां निकालते समय दें। बाजरा के सिंचित क्षेत्रों में इतनी ही नाइट्रोजन व फास्फोरस के साथ निमन नीची भूमि में 12 किलोग्राम पोटाश प्रति एकड़ डालें। बीजोपचार और रोग नियंत्रण। बीज को 3 या 4 बार धोएं, तैरते पदार्थों को बाहर निकालें। खरपतवार नियंत्रण के लिए एट्राजीन 50%, 400 ग्राम प्रति एकड़, 250 लीटर पानी में मिलाकर बिजाई के समय छिड़कें। यदि बिजाई के तुरंत बाद इट्राजीन का प्रयोग ना कर सकें, तो बिजाई से 10-15 दिनों के बीच में उतनी ही मात्रा का प्रयोग कर सकते हैं। बिजाई के 3 से 5 सप्ताह बाद निराई गुड़ाई आवश्यक है, जो खरपतवार नियंत्रण तो करती ही है, साथ ही नमी संरक्षण के लिए भी बहुत उचित उपाय है। वातावरण में ज्यादा नमी होने पर जोगिया रोग डेन्यू मैथ्यू का संक्रमण हो सकता है, जिसमें पत्तियों की निचली सतह पर सफेद रायोदार आवरण दिखाई देता है। संक्रमण की शुरुआत होते ही प्रभावित पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दें अथवा अनुसंचित कवकनाशी का छिड़काव करें। चेपा या अर्गट रोग, इसमें बचाव हेतु बीज को 10% नमक से 10 लीटर पानी में 1 किलोग्राम नमक में डुबो लें और तैरते हुए पिंडों व अन्य पदार्थों को बाहर निकालकर जला दें। नीचे बैठे हुए बीज को साफ पानी में 3 से 4 बार धोकर सुखा लें और 4 ग्राम थाइरम प्रति किलोग्राम बीज के मिश्रण से बीजोपचार करके बिजाई करें। बारिश के मौसम में मधुमक्खी के बॉक्स में फंगस पनपने का खतरा, हवा का संचार रखें। बारिश के मौसम को देखते हुए जुलाई के महीने में मधुमक्खी पालन पूरी तरह से नमी से बचाव और समय पर बाहरी आहार देने पर टिका है। आधुनिक प्रबंधन तकनीकों का पालन करके ही एक कुशल पालक अपनी कॉलोनियों को बारिश की इन चुनौतियों से सुरक्षित रख सकता है। मधुमक्खी पालन में सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि बदलते मौसम के अनुसार कॉलोनियों को कैसे संभाला जाए। कमल सैनी जिला बागवानी उद्यान विकास अधिकारी करनाल ने बताया
कि इस दौरान अधिक नमी और फूलों के अभाव में मधुमक्खियों की सुरक्षा के लिए आधुनिक प्रबंधन तकनीकों को अपनाना अनिवार्य है। बारिश के दौरान बक्सों की समय समय पर सफाई करना बहुत जरूरी है। आधुनिक तरीका यह है कि यदि कोई कॉलोनी कमजोर हो रही है तो उसे स्वस्थ कॉलोनी के साथ मिला दिया जाए मर्जर, जिससे वह सुरक्षित रहे और किसान को अच्छा मुनाफा मिले। मधुमक्खियों को चीनी का आहार देना जरूरी। बारिश के मौसम में अत्यधिक आर्द्रता ह्यूमिडिटी के कारण बक्सों में फंगस पनपने का खतरा बढ़ जाता है, जो पूरी कॉलोनी को कमजोर कर सकता है। उचित उगाई और स्टैंड। आधुनिक तकनीक के अनुसार बक्सों को जमीन से कम 6 से 9 इंच ऊंचे स्टैंड पर रखें। यदि बक्से सीधे जमीन पर होंगे तो बरसात का पानी और जमीन की नमी अंदर प्रवेश कर सकती है, जिससे छत्ता खराब हो सकता है। हवा का संचार वेंटिलेशन। नमी से बचने के लिए बक्सों के अंदर हवा का संचार अच्छा रखें। सुनिश्चित करें कि प्रवेश द्वार में कोई रुकावट ना हो और बक्से के अंदर उमस ना बने। छत्ते का भंडारण खत्म ना होने दें। बारिश के कारण बाहर प्रकृति में फूलों का रस नेक्टर मिलना बंद हो जाता है। ऐसी स्थिति में मधुमक्खियां बाहर नहीं जा पाती और छत्ते के अंदर का भंडार खत्म होने पर ही उनके भूखे मरने का खतरा पैदा हो जाता है। नियमित अतिरिक्त मदद। मधुमक्खियों को जीवित रखने और कॉलोनी को सुरक्षित बचाने के लिए इस दौरान उन्हें चीनी का घोल, शुगर सिरप का भारी आहार देना बहुत जरूरी है। यह एक तरह से उनके लिए आपातकालीन भोजन है, जो उन्हें इस कठिन समय में जिंदा रखता है। बैंगन की फसल को फल बेधक कीट से बचाने के लिए रोगग्रस्त पौधों को नष्ट करें। विशेषज्ञों की सलाह पर हर 15 दिन बाद छिड़काव करें। बरसात के मौसम में बैंगन की फसल पर फल बेधक फ्रूट एंड शूट बोरर कीट का प्रकोप तेजी से बढ़ता है। करनाल के नीलोखेड़ी ब्लॉक के तखाना गांव में इसका प्रकोप देखने पर कृषि विशेषज्ञों ने किसानों को नियमित निगरानी और वैज्ञानिक प्रबंधन अपनाने की सलाह दी है। हरियाणा में 10,720 हेक्टेयर क्षेत्र में बैंगन की खेती होती है। वह जुलाई से अक्टूबर के बीच यह कीट अधिक नुकसान पहुंचाता है। यह पहले कोमल टहनियों में छेद कर उन्हें सुखा देता है, फिर फलों में घुसकर गूदा खाता है। इससे फल बाजार योग्य नहीं रहते। कृषि विज्ञान केंद्र में विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश बेरवाल ने बताया, फूलों के आने से पहले प्रकोप दिखने पर 75 ग्राम पाइनोसेंट 45 SSP को 200 लीटर पानी प्रति एकड़ में मिलाकर छिड़काव करें। जरूरत होने पर 15 दिन के बाद छिड़काव करें। बीज उत्पादन वाली फसल में प्रोक्लेम 5 SG का भी उपयोग किया जा सकता है। संक्रमित टहनियों और फल तोड़कर नष्ट करें। रस चूसने वाले कीटों के नियंत्रण के लिए 1500 PPM नीम तेल का 4-5 ml प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव भी लाभकारी है। विशेषज्ञों ने जल निकासी, ड्रिप सिंचाई और संतुलित पोषण अपनाने की भी सलाह दी है।

ये थे आज के कृषि समाचार। अगर आपके पास भी कोई कृषि संबंधित जानकारी है, आप हमें भेज सकते हैं हमारे स्टूडियो के व्हाट्सएप नंबर पर। नंबर है 7056413010। नंबर एक बार फिर 7056413010। मिलती हूँ अगले कृषि समाचार में। तब तक आप खुश रहें, उन्नत रहें। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।

0: हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।
2: You are listening FM 90.0 megahertz, Radio Vitasta, हम सफर जिंदगी का। अंबाला केंट्स फर्स्ट कम्युनिटी रेडियो, लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।

0: सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूल ना जाइए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 FM पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।
1: आइए कुछ अच्छा सुनते हैं 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विविधता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना।

0: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
1: क्या बताऊं, मैं चाहता हूं मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुंचे।
0: अरे तो इसमें चिंता कैसी? आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
1: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
0: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010
2: पर। वितस्ता रेडियो, आपके जीवन का प्रवाह।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ रेडियो विस्तार है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

रेडियो वितस्ता FM 90 की ओर से सभी विज्ञापन दाताओं के लिए खुशखबरी। किसी भी त्योहार या स्पेशल ओकेजन पर विज्ञापन या शुभकामना संदेश देने पर वितस्ता रेडियो की ओर से दिया जा रहा भारी डिस्काउंट। ज्यादा जानकारी के लिए अभी कॉल करिए 7056413010 पर।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहे अपने पसंदीदा गीत।

0: यू आर लिसनिंग 90.0 FM, रेडियो वितस्ता हम सफर जिंदगी का, ए कम्युनिटी रेडियो लाइसेंस्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया।
1: क्या हुआ, परेशान क्यों हो?
2: क्या बताओ, मैं चाहता हूँ मेरा व्यापार पूरे अंबाला तक पहुँचे।
1: अरे तो इसमें चिंता कैसी, आज ही आप अपना विज्ञापन FM 90.0 रेडियो वितस्ता पर दें। FM 90.0 रेडियो वितस्ता अब सभी अंबाला वासियों की दिल की धड़कन बन चुकी है।
2: अच्छा, बहुत खूब, अभी संपर्क करता हूँ।
1: अभी कॉल करें 7056413010 7056413010 पर।
0: वितस्ता रेडियो, आपकी जिंदगी की रवानी।
3: करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अंबाला केंट से हमारी प्रसारण सुनते रहिए

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो मितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: ओ टाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला कैंट से हमारे ये प्रसारण सुनते रहिए।

0: تُہۍ چھِو بوزان 90.0 ریڈیو وِتستا، ہم سفر زندگی ہُنٛد۔
1: آنکھوں میں

सुनिए और सुनाइए, रेडियो विविधता सुनना भूलना चाहिए। आपका रेडियो आपकी अपनी आवाज, रेडियो विविधता 90.0 एफएम पर हर रोज सुनिए मनोरंजन दिन भर और साथ में पल पल की खबर देता है आपको सिर्फ और सिर्फ रेडियो विविधता, आपका अपना रेडियो आपकी आवाज दिल से।

0: एक ही ताज महल, एक ही लता मंगेशकर, एक ही रेडियो बितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: उठाई दिन न जवानी नल चल दी
0: 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर। अम्बाला केंट से हमारे ये प्रसारण, सुनते रहिए दिल से।
2: सुनते रहिए 90.0 FM रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।

0: 90.0 FM पर सामाईन की खिदमत में पेश है रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का।
1: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अम्बाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपोरी। आज वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे के अवसर पर हमारे साथ हैं डॉक्टर राजीव भारद्वाज मुलाना से। स्वागत है डॉक्टर राजीव भारद्वाज FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता पर।
1: थैंक यू सर।
0: मेरा पहला सवाल आपसे होगा, क्या हाइपरटेंशन सच में हार्ट अटैक का कारण बन सकता है?
1: ये हार्ट अटैक के कारणों को हम दो टाइप से डिवाइड करते हैं। एक तो होता है जो मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, एक नॉन मॉडिफाइबल। तो नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स ऐसे होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, जैसे मेल सेक्स है, मेल होना ही एक मेन कारण है हार्ट अटैक मेल्स में ज्यादा होता है। सिमिलरली एज, जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती रहती है हमारे हार्ट अटैक का चांसेस बढ़ते रहते हैं। और तीसरा जो है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर जिसको हम बोलते हैं, वो फैमिली हिस्ट्री। अगर आपकी फैमिली में किसी को हार्ट अटैक हुआ है, आपके हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, पर इनका आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं मॉडिफाइबल, जैसे डायबिटीज हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हाई कोलेस्ट्रॉल हो गया, आपका लाइफस्टाइल हो गया। तो ये सारे सेडेंटरी लाइफस्टाइल जिसमें आप ज्यादा चलते फिरते नहीं है, बैठे रहते हैं, तो ये कारण होते हैं। तो ये जो हाइपरटेंशन है ये मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स है, मींस के अगर आप बीपी कंट्रोल रखते हैं तो आपका जो हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं।
0: जी डॉक्टर साहब, क्या एनर्जी ड्रिंक और जंक फूड हमारे दिल को नुकसान पहुंचा रहे हैं?
1: बिल्कुल, ये आजकल का लाइफस्टाइल जो है, खासकर हमारे यंगस्टर्स, ये एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड में बहुत विश्वास करते हैं। तो जैसे एनर्जी ड्रिंक्स है, इससे हमारी सिंपैथेटिक एक्टिविटी बढ़ती है, जिससे ब्लड प्रेशर ज्यादा होता है, दिल की धड़कन बढ़ जाती है, हार्ट अटैक का डर बढ़ जाता है, और इसमें शुगर भी ज्यादा होती है, सोडियम भी ज्यादा होता है इनके फास्ट फूड में। जब शुगर ज्यादा होता है तो उनको डायबिटीज होने का डर रहता है, ट्राइग्लिसराइड लेवल भी इनसे बढ़ते हैं, और इसमें रिफाइंड शुगर कार्बोहाइड्रेट ज्यादा आता है जिससे हमारा इमीडिएटली शुगर बढ़ जाता है, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, तो हमें हार्ट अटैक का भी डर रहता है और साथ में ब्लड प्रेशर होने का भी डर रहता है इनसे।
0: जी डॉक्टर साहब, अगला प्रश्न मैं आपसे करूं तो प्रश्न ये है कि कोलेस्ट्रॉल हार्ट अटैक में कैसे योगदान देता है?
1: ये कोलेस्ट्रॉल जो है, हमें अगर आम भाषा में बोले, एक बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, एक गुड कोलेस्ट्रॉल होता है।
0: जी।
1: तो हमारा जो एचडीएल जिसको हम बोलते हैं वो गुड कोलेस्ट्रॉल है, तो ये हमें हार्ट अटैक से बचाता है। तो जितना ज्यादा हमारा एचडीएल लेवल होगा उतने ज्यादा हमें प्रोटेक्शन मिलती है हार्ट अटैक से। लेकिन एक एलडीएल कोलेस्ट्रॉल होता है, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जिसे हम बोलते हैं, उसे हम आम भाषा में बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं। तो ये जो कोलेस्ट्रॉल है, ये हमारी जो खून की धमनियां है जो हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है, या और भी धमनियां जो है उनकी, जैसे ब्रेन को ब्लड जाता है, ये इन धमनियों में ये जम जाते हैं, और जिसको ऑक्सीडाइज एलडीएल बोलते हैं, वो हमारा मेन कारण होता है जो प्लाक फॉर्मेशन ब्लड वेसल्स के अंदर जो है वो नैरिंग होती है, और एक मेन कारण जो है इनका नैरिंग होती है, और जब वो हार्ट अटैक होता है तो उस टाइम ये रक्त इंटीमा जो है, जो ब्लड कवरिंग है, ब्लड वेसल की कवरिंग है, वो फटती है, और वो कोलेस्ट्रॉल जो है वो ब्लड वेसल में आ जाता है, उसके ऊपर रेडलेट डिपोजिट होते हैं, क्लॉट बन जाता है और हार्ट अटैक हो जाता है। एलडीएल कोलेस्ट्रॉल जो हमारा मेन एम ट्रीटमेंट का, बाकी चीजों के साथ हमें एलडीएल कोलेस्ट्रॉल बहुत कम करना पड़ता है, बचाने के लिए भी और हार्ट अटैक की ट्रीटमेंट के लिए।
0: बहुत बहुत धन्यवाद सर। अगला प्रश्न आपसे करता हूँ, क्या अपनी मर्जी से बीपी की दवा बंद करना खतरनाक है?
1: ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा, क्योंकि बीपी एक ऐसी चीज है जिसके बहुत सिम्टम नहीं होते।
0: जी।
1: तो अगर किसी चीज के सिम्टम्स, जैसे किसी को आर्थराइटिस है, क्योंकि उसे दर्द होती है, वो मेडिसिन लेता रहता है। जिस पेशेंट को डायबिटीज है, उसको पेशाब ज्यादा आता है, रात रात को उठना पड़ता है, तो वो भी मेडिसिन की, वो भी दवाई लेता रहता है। लेकिन ब्लड प्रेशर के ज्यादा सिम्टम्स नहीं होते, तो अगर हम किसी को प्रिस्क्राइब भी करते हैं, वो थोड़े दिनों बाद छोड़ देता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये, क्योंकि ब्लड प्रेशर को हम साइलेंट किलर बोलते हैं, बीपी हाई होने से आपके हार्ट अटैक का डर रहता है, आपको पैरालिसिस का डर रहता है, लॉन्ग टर्म में बीपी हाई रहता है तो आपकी किडनी खराब हो सकती है, आपको ब्लड वेसल में एनरिज्म फॉर्मेशन होती है, तो बहुत रिस्क है ब्लड प्रेशर का हाई होने का। और जो इसलिए ज्यादा रहता है कि हम ब्लड प्रेशर या तो चेक ही नहीं कराते हैं, अगर करवाते हैं तो दवाई अगर हमें प्रिस्क्राइब कर रखी है उसे अपने आप ही छोड़ देते हैं, कि हमें लगता है कि हमें कोई सिम्टम नहीं, इसलिए बीपी कंट्रोल।
0: क्या डॉक्टर साहब, जब हम बीपी की दवाई खाना शुरू करते हैं किसी भी एज में और किसी भी समय, क्या उसको कंटिन्यू रखना बहुत जरूरी है?
1: ये डिपेंड करता है आपका बीपी कितना ज्यादा है। जैसे अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करें, फॉर एग्जांपल फैटी फूड है उस पे कंट्रोल करें, और जैसे आपने अभी बताया एनर्जी ड्रिंक्स और फास्ट फूड लेना बंद करें और डेली एक्सरसाइज करें 4 से 6 किलोमीटर प्रतिदिन एटलीस्ट 4-5 times अ डे वीक, तो इससे हमारा ब्लड प्रेशर इन सब चीजों से कम होता है। अगर आपका बीपी बॉर्डर लाइन में है, थोड़ा सा ज्यादा है, तो ये भी हो सकता है कि कुछ दिनों तक मेडिसिन लेने के बाद जब आप लाइफस्टाइल में अपना चेंजेस करते हैं तो आपका बीपी कंट्रोल हो जाए और आपको दवाइयों की जरूरत ना पड़े। पर अगर आपका बीपी ज्यादा रहता है तो इन सब चीजों से आपका कुछ बीपी कम होगा, आपकी दवाइयों की रिक्वायरमेंट कम होगी, बट ये बंद शायद ना करनी पड़े।
0: आखिरी प्रश्न मैं आपसे करूंगा, क्या खराब नींद की आदतें समय के साथ दिल को नुकसान पहुंचा सकती है?
1: खराब नींद का भी एक आजकल ये जो है ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज के रिस्क फैक्टर्स में आ गया है। और खराब नींद कई तरह से होती है, नींद ना आना जिसे हम इंसोम्निया कहते हैं, नींद कम आना या बीच में टूट टूट कर नींद आना, कई बार अधिक नींद आना, इन सब से एक सबसे इम्पोर्टेंट है जिसे हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया। ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया ये आमतौर पर उन लोगों को होता है जिनमें मोटापा होता है, इनका ब्लड प्रेशर ज्यादा बढ़ता है, ये खराटे ज्यादा लेते हैं, और इसको एक चीज होती है जो जिसे हम बोलते हैं डे टाइम सोमनोलेंस, मीन्स ये बैठे बैठे सो जाते हैं। तो ये जो है इनके इनका बीपी भी ज्यादा होता है, इनको हार्ट अटैक का भी खतरा होता है, सडन कार्डियक डेथ का भी खतरा होता है, और हार्ट फेलियर का भी खतरा होता है। और हमारी जिसकी भी अगर 6 घंटे से कम नींद हो तो ब्लड प्रेशर का बढ़ने का चांस होते हैं, शुगर का चांस होता है, मोटापा होने का चांस होता है, और सारी चीजें जो है स्लीप डिस्टर्बेंस ये कंट्रीब्यूट कर सकते हैं।
0: डॉक्टर साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की, और ये पब्लिक अवेयरनेस इनिशिएटिव फॉर हेल्दी इंडिया है, बहुत बहुत धन्यवाद सर।
1: थैंक यू
0: सो मच।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का। मैं हूं आपका रेडियो दोस्त भारत सोपुरी। आइए हम आपको विश्व धरोहर दिवस यानी वर्ल्ड हेरिटेज डे पर आप सभी को हमारे शहर अंबाला के 8 मुख्य विरासतों की अनूठी कहानियां बताते हैं। हम सबको अपने शहर के बारे में जानना चाहिए और ये काम आज एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता आपके लिए कर रहा है। विश्व धरोहर दिवस दुनिया भर की ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहरों को समर्पित है। ये दिन हर साल 18 अप्रैल के दिन मनाया जाता है। इस दिन को विश्व धरोहर दिवस के साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस जैसे नामों से भी पुकारा जाता है। आज वर्ल्ड हेरिटेज डे पर इंडियन नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर आर्ट एंड कल्चरल हेरिटेज के संयोजक रिटायर्ड कर्नल आर.डी. सिंह के माध्यम से अंबाला की अनूठी विरासतों की रोचक कहानियां हम आपके लिए लाए हैं। चार सौ साल पुराना है रानी का तालाब। रानी के तालाब एवं मंदिर निर्माण करीब 400 साल पूर्व महाराजा पटियाला के अधीन आने वाली छछरौली रियासत के राजा रंजीत सिंह ने करवाया था। राजा ने रानी के शाही स्नान के लिए यहां तालाब बनवाया था, जिसमें स्नान के उपरांत यहां बनाए शिव मंदिर में रानी रोजाना पूजा अर्चना करती थी। साल 1999 में इस मंदिर को सेना ने अपने सुपुर्द में ले लिया था। गुरुद्वारा पंजोखरा साहिब आस्था का केंद्र। 8वें सिख गुरु हरकिशन राय से संबंधित पंजोखरा साहिब धार्मिक आस्था का केंद्र है। गुरु हरकिशन राजा जय सिंह के निमंत्रण पर कीरतपुर से दिल्ली जाते समय पंजोखरा साहिब में रुके थे। सिख इतिहास के मुताबिक गुरुद्वारे में गुरु ने अपनी बाल्यावस्था में ही गूंगे व बहरे शख्स से गीता के श्लोक कराए थे। होली रिडीमर चर्च है बेहद खूबसूरत। अंबाला कैंटोनमेंट बसने के महज 5 साल बाद यानी 1848 में बना व 1905 में नए सिरे से निर्मित होली रिडीमर चर्च करीब 115 साल बाद भी बेहद खूबसूरत है। यूरोप की गोथिक शैली में इस कैथोलिक चर्च में एक साथ 800 लोग के प्रार्थना करने की क्षमता है। इस चर्च में भारत के एकमात्र कैथोलिक वॉइसराय 1880 से 1884 कोलकाता से शिमला जाते हुए आए थे। सेंट पॉल चर्च पर पाकिस्तान ने गिराए थे बम। सेंट पॉल गैरिजन चर्च का निर्माण 14 जनवरी 1852 में शुरू किया गया था, जो कि 4 जनवरी 1857 को बनकर तैयार हुआ था। 21 सितंबर 1965 को पाकिस्तान बम वर्षक विमानों ने छावनी स्थित एयरफोर्स स्टेशन को निशाने पर लिया था, लेकिन बम सेंट पॉल चर्च पर गिराए गए थे। देश के बंटवारे से पहले ये चर्च डायसिस ऑफ लाहौर की देखरेख में था। कोस मीनार, इन्हीं को देख के चलते थे सैनिक के काफिले। अंबाला शहर के रेलवे रोड पर कपड़ा मार्केट में बनी शेरशाह सूरी की कोस मीनार कभी सैनिकों और जीटी रोड से गुजरने वाले राहगीरों को राह दिखाने का काम करती थी। इस मीनार को 16वीं शताब्दी में शेरशाह सूरी के द्वारा बनवाया गया था। बीते जमाने में ये संचार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। इन्हीं मीनारों को देखकर सैनिक काफिले चलते थे और डाक सिस्टम भी इन्हीं के तर्ज पर चलता था। कब्रिस्तान में दफन है अंग्रेज सैनिकों के शव। अंबाला में 1844 में बने कब्रिस्तान में प्रथम विश्व युद्ध व द्वितीय विश्व युद्ध में मारे गए अंग्रेज सैनिकों के शव दफन है। करीब 23 एकड़ में बनाए गए इस ईसाई कब्रिस्तान में 2 लाख के करीब कब्र थे। हर कब्र का अपना एक इतिहास है। यहाँ आज भी अंग्रेज अपने पुरखों की तलाश में आते हैं। प्राचीन अंबिका देवी मंदिर में 250 साल से जल रही है ज्योति।
पिंडी रूप में विराजमान प्राचीन माता अंबिका देवी मंदिर के इतिहास का कोई साक्ष्य प्रमाण नहीं है, लेकिन मंदिर में पिछले करीब 250 साल से मां की ज्योति निरंतर जल रही है। पुराणों में जिक्र और आस्था से जुड़े होने के कारण नवरात्र के मौके पर यहां शीश झुकाने के लिए दूर दराज से श्रद्धालु पहुंचते हैं। गुरुद्वारा लखनऊ साहिब में जन्मी थी माता गुजरी। पिंडी के रूप में सिखों के 10वें गुरु गोविंद सिंह जी की माता गुजरी का जन्म इसी गांव में हुआ था। दशम पातशाही गुरु गोविंद सिंह जी ने बाल अवस्था में अपने ननिहाल लखनऊ साहब में काफी समय व्यतीत किया। लखनऊ साहब में गुरु गोविंद सिंह जी के ननिहाल होने के कारण ये गांव सिखों के लिए एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। ये थी कुछ जानकारी जो हमने आपके साथ साझा की, और ये जानकारी हमें मिली अम्बाला के एक मुख्य समाचार पत्र से। आने वाले दिनों में हम और रिसर्च कर आपको पूरी जानकारी हर एक हेरिटेज के बारे में देते रहेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हमारे युवा और सभी लोग अम्बाला की धरोहर के बारे में जानें। हम प्रयासरत हैं और हम हर दिन कोशिश करते हैं कुछ नया करने की। अब मुझे दीजिए इजाजत, आप खुश रहिए, खुशहाल रहिए और सुनते रहिए FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का फ्रीक्वेंसी 90.0 पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है, लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

आप सुन रहे हैं एफएम 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो विदस्ता हम सफर जिंदगी का आपके जीवन का प्रवाह। आपके लिए प्रस्तुत कर रहे हैं एक टाइटल सॉन्ग पलायन यानी विस्थापन। ये गीत वो दर्द बयान करता है जो हर कश्मीरी पंडित का है, मेरा है, जिस कारण हम सबको अपने घर जमीन छोड़ के आना पड़ा था। आए तो कुछ दिनों के लिए, महीनों के लिए थे, पर अब ये विस्थापन यानी पलायन 35 वर्ष पूरे कर चुका है और 36वां वर्ष शुरू हो गया है। आगे कितने साल होंगे पता नहीं। इस टाइटल सॉन्ग को आपके लिए लाए हैं फिल्म इंडस्ट्री में 75 से ज्यादा फिल्मों में चाइल्ड एक्टर के तौर पर काम करने वाले आदरणीय गोपी सप्रू जी। इस टाइटल सॉन्ग पलायन को संगीत दिया है, लिखा है और निर्देशित किया है इसी महान कलाकार ने, जिनको हम गोपी सप्रू जी के नाम से जानते हैं। आइए सुनते हैं ये टाइटल सॉन्ग पलायन और महसूस करते हैं वो दर्द जो हर एक शब्द में कहा गया है, लिखा गया है और तैयार किया गया है।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो विविधता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर रेडियो विविधता, अंबाला का अपना रेडियो।

करें अपने दिन की शुरुआत रेडियो वितस्ता के गीतों के साथ। 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो।

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं FM 90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का। आज की शाम हम सजाए हैं गजल के उस हरफन मौला गायक भूपिंदर सिंह और मिताली जी के नाम, दर्द जज्बात मोहब्बत और अल्फाजों के सुरूर के साथ पेश है शामे गजल।

आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहिए अपने पसंदीदा गीत।

ये अंबाला कैंट का सामुदायिक रेडियो FM 90.0 मेगाहर्ट्ज रेडियो विदस्ता है। हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो।

0: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। सुनते रहें अपने पसंदीदा गीत।
1: प्रस्तुत है कार्यक्रम सरगम एपिसोड 7। इसमें हम आपको पुराने हिंदी फिल्मी गाने सुनाते हैं। इस कार्यक्रम को पेश करेंगे आरजे किरनी, रिकॉर्ड किया राहुल अल्यान ने, एडिट व निर्देशन दिया भारत सोपोरी ने।
2: आप सुन रहे हैं FM 90.0 MHz पर रेडियो वितस्ता, हम सफर जिंदगी का अंबाला का अपना रेडियो। दोस्तों, शब्दों से भरी दुनिया में कुछ आवाजें दिलों को छू जाती है और कुछ सुरों का जादू हमें यादों के सफर पर ले जाता है। आज का ये सफर उन्हीं सुरों के संग होगा जो कभी मुस्कान बनेंगे तो कभी आंखों में नमी लाएंगे। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त किरणी, सभी को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार और पेश कर रही हूं आज का कार्यक्रम सरगम। तो चलिए शुरू करते हैं आज के गीतों का सिलसिला। तो आज का प्रोग्राम शुरू करते हैं प्रेम रोग के गाने से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और सुरेश वाडकर ने, जिसके बोल लिखे हैं आमिर कजालबश ने और संगीतकार है लक्ष्मीकांत पैरे।

लीजिए आप सुनते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में फिल्म शोर का गाना, जिसे लिखा है संतोष आनंद ने और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल।

अब आपकी नजर पेश है फिल्म जुदाई से गाना, जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल और उसके बोल लिखे हैं आनंद बख्शी ने और गाया है आशा भोसले ने।

कार्यक्रम की अगली पेशकश है आनंद बख्शी का लिखा हुआ गाना, जिसको आवाज दी है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, और जिसके संगीतकार है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, और फिल्म है सुहाग।

लीजिए आप सुनते हैं मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गाना, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मुकेश ने, और जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और फिल्म का नाम है पत्थर के सनम।

सभी श्रोताओं के लिए अगला गाना है आनंद बख्शी का लिखा हुआ, जिसको संगीत दिया है लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने और आवाजें दी हैं लता मंगेशकर और मुकेश ने, और फिल्म फर्ज का गाना है ये।

अगला नगमा है फिल्म असली नकली से, जिसे गाया है लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने, और जिसको संगीत दिया है हसरत जयपुरी ने, और उसके बोल लिखे हैं शंकर जयकिशन ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सरगम 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। अगली पेशकश है लक्ष्मीकांत प्यारे लाल का संगीतबद्ध किया हुआ गाना, जिसे लिखा है आनंद बख्शी ने और फिल्म है सुहाग, और उसको अपनी आवाजों से सजाया है मोहम्मद रफी और लता मंगेशकर ने।

अब सुनते हैं राजेंद्र किशन का लिखा हुआ गाना, जिसे गाया है मोहम्मद रफी और आशा भोसले ने, जिसको संगीत दिया है शंकर जय किशन ने, और फिल्म है सच्चाई।

0: दो चार दिन।
1: कार्यक्रम का अगला गाना है किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाज में, जिसके गीतकार है साहिर लुधियानवी और संगीतकार है खयाम, और फिल्म कभी कभी से लिया गया है।

कार्यक्रम का आखिरी गाना है फिल्म अजनबी से, जिसके संगीतकार है आरडी बर्मन, गीतकार है आनंद बख्शी और आवाजें दी है लता मंगेशकर और किशोर कुमार ने।

इसके साथ ही सरगम का आज का अंक यहीं पर समाप्त होता है। आप हमें फीडबैक दे सकते हैं radiovitasta@gmail.com पर। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। जय हिंद। जय भारत।

आपने ट्यून इन किया है FM 90.0 MHz पर रेडियो विदस्ता, हम सफर जिंदगी का, आपके जीवन का प्रवाह। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग की ओर से सभी सामुदायिक रेडियो को कहा गया कि वो साइबर अपराध पर अपने श्रोताओं को जागरूक करें। ये कार्य हमने पहले भी किया है और आज हम एक बार आपको फिर कुछ जानकारी देना चाहते हैं। आजकल ऑनलाइन निवेश से जुड़ी धोखाधड़ी के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। कुछ लोग सोशल मीडिया विज्ञापनों, व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप्स के जरिए गारंटीड रिटर्न का झूठा वादा करते हैं। कई बार ये लोग मशहूर हस्तियों या नेताओं के डीप फेक वीडियो भी दिखाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन दोस्त या डेटिंग ऐप पर मिला व्यक्ति निवेश का ऑफर दे तो तुरंत सतर्क हो जाए। निवेश किसी भी तरह का हो सकता है, शेयर बाजार, क्रिप्टो या सोना। ठग आपसे फर्जी मोबाइल ऐप या वेबसाइट इस्तेमाल करवाते हैं, जहां पैसा बढ़ता हुआ सिर्फ दिखाई देता है लेकिन असल में पैसा धोखेबाजों के पास चला जाता है। याद रखिए, ना कोई सेलिब्रिटी और ना ही सरकार कभी भी निवेश पर गारंटीड रिटर्न दे सकती है। आपको इस विषय पर सतर्क रहना होगा। जो भी हमें इस समय सुन रहे हैं, चाहे वो वृद्ध है चाहे वो युवा है, ये मैसेज सभी के लिए है। अगर युवा सुन रहे हैं तो इस बात को अपने दोस्तों, अपने परिवार में वृद्ध जनों को, सीनियर सिटीजंस को या आपके आसपास जितने भी लोग हैं उन्हें भी सचेत करें। भारत सरकार का इनिशिएटिव यही है कि हम सब सतर्क रहें और हमारी मेहनत की कमाई किसी ठग के हाथ में ना चली जाए। अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज कराएं। हम आपको नंबर एक बार फिर बताते हैं, अगर आप धोखाधड़ी का शिकार हो जाएं तो तुरंत 1930 यानी 1930 पर कॉल करें या cybercrime.gov.in पर शिकायत दर्ज करें। ये जानकारी आपको हम दे रहे हैं मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के सौजन्य से। होशियार रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।

समय की रफ्तार कभी थमेगी नहीं और ना ही जमीन और आसमान का मिलन होगा। जैसे चांद कभी धरती पे आ नहीं सकेगा या उतरेगा नहीं, वैसे ही जैसे इन पानियों का बहाव रुकेगा नहीं, रुकेंगी नहीं हवाओं की सरगोशियां, रुकेंगी नहीं मौसमों की गर्माहट और ठंडक। बेशक तुम्हारी मोहब्बतों में शादाबियां हैं।

रहा, क्योंकि इन शामों से हम अब अलग हो चुके हैं। रोज देखता हूं बंद कमरे की खिड़की से थके हारे परिंदों की परवाज अपने अपने घोंसलों की तरफ जाते हुए, एक उम्मीद लिए कि सुबह की बरसात भिगोएगी हमारी जात को, हमारी मुस्कुराहटों को।

फुर्सत के लम्हों में क्या कभी ख्वाबों की ताबीर होगी? नहीं, शायद नहीं, क्योंकि मेरे ख्वाब थे फीके फीके और तुमने रंग भर दिए। कैनवास पे उतारने की कोशिश भी की, पर रंग कच्चा था जो बिखर गया, लुप्त हो गया।

ये बेताबियां हैं मेरी उदासी का सबब। चेहरे की मुस्कुराहट बयां कर रही है दर्द की इंतहा, और दर्द उठता है दिल में शब रोज। सजदों में बोलते परिंदे मेरी खामोशी को बांप लेते हैं। ये नदी मेरे पैरों को छूकर गुजरती है, एहसास दिलाती है गुजरे हुए पलों का, मेरे अपने

आज इन बर्फीली घाटियों में एक जिंदगी खामोश है। यहां लम्हे चुप हैं पर रातें ही शादाब, सन्नाटा पसरा है। गुप अंधेरे भी यहां बोलते हैं, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो, तोड़ दो अपनी चुप्पी, अपनी उदासी को। आज यहां इन बर्फीली हवाओं में पत्थर भी पिघलते हैं, यहां मेरे सब्र का पैमाना भी अब टूटा जा रहा है। कुछ कहो, तुम भी कुछ बात करो, कुछ कहो।

दोस्तों, आपको हमारा आज का ये प्रोग्राम कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब चाहेंगे हम आपसे इजाजत। नमस्ते।

आप सुन रहे थे रेडियो विकसता 90.0 मेगाहर्ट्ज पर। आज के हमारे प्रसारण अब यहीं समाप्त होते हैं। हम आपकी सेवा में सुबह छह बजे से रात 9 बजे तक रहते हैं। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त और होस्ट कृष्णा। चाहूंगी आपसे आज्ञा। मिलते हैं कल।

सुबह 5:58 पर नई ऊर्जा और नई उमंग के साथ। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। शुभ रात्रि। नमस्कार। जय हिंद। वंदे मातरम।